शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुनाए हैं निकति एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म अली बाबा एंड द 40 थीव्स यानी अली बाबा और 40 चोर। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, गीत सुनिए।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है, यानी खुशकिद ने इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 40 थीव्स में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन सस्त सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिलके ये शानदार डुएट आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं और आपके धन्यवाद। एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य, और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाएं, निकती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपन एयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेद हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

0: देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।
1: ये अपिका एनख एख्त फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो ओवर द हेल वीरल, नए से नए पुराने से पुराने गीत आपके लिए यहाँ से तैयार करके और आपके कानों तक लाया जाता है। इस वक्त के मेरे दोस्त, आप जहाँ भी हो जैसे भी हो, जरूर से यही दुआ प्रार्थना है कि हम सब हंसते मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल वैसे मुस्कुराते हुए बत्तीसी दिखाते हुए ये पल को स्वागत करें। कारण कि आप है तो सब कुछ है, वैसे तो सब कुछ है और रहेगा, हम भी रहेंगे शायद। ये भेष भूषा में नहीं बल्कि हम पूर्ण जन्म में फिर से वापसी आ जाएंगे।

बाबा बाबा इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया तुमको हम पे प्यार आया प्यार आया ओए हमको।

न ढल जाए मोहम्मद रफ़ी जी के सुंदर सी आवाज़ में, प्यार भरी आवाज़ में सुना दिए। इस बार है दिन है बहार के फिल्म वक्त से।

थालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विटरे का छोटा अपोदम

हे बस हंसते हंसते जिंदगी गुजारे मेरे दोस्त, क्योंकि वक्त दोबारा नहीं आता, ये जिंदगी भी दोबारा नहीं मिलती। फिल्म भूत बंगला से ये गीत आपके लिए।

कोई और ना मिले, क्या बात है कि दुआ है कि तेरी मोहब्बत के सिवा कोई और ना मिले। जिंदगी में सिर्फ तू मिले, जिंदगी में सिर्फ तू मिले, या फिर जिंदगी ना मिले। क्या गहराई है, क्या गहराई है ये शेर शायरी में।

सच में कहा, मैं भी कहती हूँ कि ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, जिंदगी में जैसे भी है बस मुस्कुराकर और आगे बढ़ते रहना। दुख जो आए तो पल में वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे दुनिया भर की खुशी नहीं चाहिए मेरे दोस्त, मुझे दुनिया भर की खुशी नहीं चाहिए, मुझे हर सुखी हर खुशी में तुम और तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ, मेरी हर खुशी में तुम और तुम्हारा साथ चाहिए। दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई है कि दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई है, तेरी एक मुस्कुराहट मेरी जाने की वजह, मेरे जीने की जाने तो नहीं बल्कि तुम्हारे पास आने की वजह बन गई है।

क्या बात है, फिल्म गुमराह से यहाँ से आपके लिए स्पेशल स्पेशल सभी लिसनर्स के लिए पेश किया गया है। और इस बार आपके लिए प्लेलिस्ट पर है कि दिल के देखो चेहरा को ना देखो चेहरा अक्सर, चेहरा अक्सर धोखा दे जाते हैं, है ना। और कहते हैं कि तेरी बाहों की गर्मी में सारा यहाँ भूल जाते हैं हम, तेरी एक मुस्कान पर हम खुद को हार जाते हैं। लफ्जों में कहाँ, लफ्जों में कहो बयां हो पाता है, लफ्जों में कहाँ बयां हो पाता है ये एहसास। हाँ, हम लफ्जों में ये बयां नहीं कर सकते, सिर्फ बता सकते हैं। तुम पास हो तो हर पल प्यार बन जाता है। A lovely moment for everyone. ये इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको हम यहाँ से सुनाए, देखो तो कहाँ है, कहाँ चला गया। हाँ, वादा था सुनाने के लिए आपको कि दिल को देखो चेहरा ना देखो।

वाकई में दिल सच्चा और चेहरा झूठा फिल्म सच्चा झूठा से आपके लिए यहाँ से पेश किया गया है। ये दो लाइन आप जरूर सुने और इस पे थोड़ा से गौर करें और अपने आसपास में जरूर से ख्याल करना कि इंसान जितना अंदर से अकेला होता है उतना ही बाहर से मुस्कुराता है। ये हकीकत है। आप जरा अपना इर्द गिर्द में संगठन में बैठना, दोस्तों में बैठना, तो आप थोड़ा से ख्याल करना। ये बात सही है कि इंसान जितना अंदर से अकेला होता है उतना ही बाहर से मुस्कुराता है।

कह दो वही फिल्म से निकाल दिया गया है, फिल्म सच्चा झूठा। किशोरदास जी की आवाज में, किशोरदास जी की आवाज में कितना गर्मी है, कितना प्यार है, कितना एहसास है, वाओ। ठंडा मौसम हल्की बारिश, ठंडा मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था, चार कदम साथ चले थे, हाँ सात कदम साथ चले थे, आँख खोली तो ख्वाब था। हाँ ये ख्वाब जो हम देखते हैं ना बैठ के आँख मूंद कर, सो कर, कभी कभी हम जागते हुए भी ख्वाब देखते हैं। तो जो आप ख्वाब देखते हैं ना मेरे दोस्त, कोशिश करना कि इसके हकीकत बना लेना। हाँ जो पॉजिटिव खदाख्त है ना, दैट यू ऑली ऑली पॉजिटिव खदाख्त व्हाट यू थिंक दैट दी मार इन फुलफिलिंग कम। तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तू पास हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। तो सोचो आप कितना

और यहां से आपके लिए एक खूबसूरत गीत सुंदर आवाज में, और फिल्म का नाम यहाँ से हम आपको बता देते हैं, फिल्म का नाम है ऊंचे लोग और ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है 1965 में, हाँ मोहम्मद रफी जी की आवाज में फिरोज खान ये गीत को प्लेबैक की है, तो सुनेंगे हम कि जाग ए दिले दीवाना।

वेरी रोमांटिक गीत है, अल्फा से इनमें और इनकी धुन जो है कितने रोमांटिक से ये गीत, रोमांस वाला गीत और रोमांटिक मूड में ये भी हमको सुना दी है। और ये कौन था? हाँ, मोहम्मद रफी जी के सिवा और कौन हो सकता है। से भी महंगी भावनाएं होती है मेरे दोस्त, कि समय से भी महंगी भावनाएं होती है, जो समझो उसी पर खर्च जरूर से करना। जो आपको समझे, आपके भावनाओं को समझे, उसी पर अपना जीवन जो है, जो पल है, जो खुशियां है, उसी पर खर्च करो। कहते हैं कि ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो। हाँ, ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वह चाहे जैसा भी हो, बस तुम मेरे करीब रहो। और इस बार थे फिल्म जूली से, माई हार्ट इज बीटिंग।

वाओ कितना सुंदर, कितना प्यार भरे गीत, तुम तो प्यार हो। कितने मिठास ये सब गीतों में और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो इसमें सब रचाई गई है। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन मिलता है, देखते हैं पहले कौन मिलता है, हमें दोनों का इंतजार है। जीवन साथी कब मिले ये पता नहीं, और मौत कब आए ये भी पता नहीं। तो मैं कहती हूँ कि मौत का इंतजार मत करो, वो तो हर पल पे आ जाएगा। बात ये है कि अपना जीवन जो है उसे खुल कर जियो।

यही उम्मीद है कि सिर्फ दिल नहीं हम मेरी, बल्कि आपके दिल भी वैसे ही गाता रहे मेरे दोस्त, गाता रहे मेरे दिल। फिल्म गाइड से निकाल दिया गया है और ये फिल्म नेकंतीन फैफन सेस्तक में पिक्चराइज किया गया है। और फिल्म गाइड के बाद बात आपको लेकर चले हम मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत पल में कि मेरे मन की गंगा और फिल्म संगम से नेकंतीन फैफन सेस्तक ये पिक्चराइज हुआ।

बात हुई ना कि होगा होगा और जरूर होना ही चाहिए संगम। मैं ये कहती हूँ संगम तो होना चाहिए, पर किससे होना चाहिए ये भी समझ बूझ कर, और बंधन में बंधो मेरे यारो। सहेली हो यारो हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, सहेली है जो भी बंधन है, ये संगम जो है इसे समझ बूझ कर रिश्ता जोड़ो। फिल्म संगम से हाँ छलांग तो मार दी इस बार, चले सुने याहू।

या माय दोस्त, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे जाए, जा कहे, नेवर माइंड नेवर माइंड। और उसके बाद कि आज फिर जीने की तमन्ना है, फिल्म गाइड से फिर एक बार से

ले भैया जी ले, मरना तो एक दिन तो है, पर आज जो मिले हैं ये जीवन, बहुत प्यार के साथ ये जीवन हमें मिले है, मिला है। और ऐसे अभी कई अन्य शिशु को जन्म जो हुआ था है, तो उनको भी हार्दिक से स्वागत है

रुको रुको तो जरा, इतना जल्दी जल्दी तो ना होना चाहिए। अजीब दास्ता, हाँ अजीब दास्ता है ये रिश्ता, ये सभी जो है कि हम कभी कभी ऐसे रिश्ते में पास पास में बैठे रहते हैं, और आजकल तो मोबाइल जो है ना पास पास में बैठे रहते, पास पास में सोते रहते, एक बिस्तर में सोते रहते, पर अजनबी की तरह जीवन गुजार रहे हैं। मैं कहती हूँ समय के देखकर मोबाइल जो है ना वह कभी कभी अपने से दूर करके अपने प्राणी की, अपने घर के निवासियों को, पति के पत्नी को, बच्चों को, परिवार को थोड़ा से ध्यान देना, थोड़ा से प्यार देना। नहीं तो एक ही छत के नीचे रहकर अजनबी की तरह जीवन गुजारेंगे। ये होता है तो इससे हमें बचना है, और उसके बाद बस ये।

जाने वाले गीत आपको सुना दी है लता जी, और फिल्म का नाम, जी हाँ आप हमेशा पूछते हैं कौन सा फिल्म है, तो ये फिल्म का नाम है जो आपने सुने, मैं भी सुनी दिल लगाकर और सुनी, फिल्म का नाम असली और नकली। मेरे दोस्त असली और नकली नेखन तीन ट्विंस, एस तक ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ कौन असली है कौन नकली है ये समय के अनुसार सब पर्दे से बाहर आ जाता है। असली नकली के बाद चलते हैं सुनने के लिए फिल्म काला बाजार से, और 2 साल पुराना गीत है ये नेखन तीन सस्ता के। हाँ नेखन तीन तीन सस्ता के बाद 2 साल पुराना नेखन तीन सस्ता के काला बाजार से निकाला गया है ये गीत।

ये चलाना कितना आवश्यक थे मेरे दोस्तों, कि खोया खोया चांद कितना रोमांटिक गाना, बस आपके लिए सिर्फ आपके लिए पेश हो रहा है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। उसके बाद हाँ, 5 बरस और पुराना हम आपको गहराई में ले चलते हैं। जितनी गहराई में हम जाएंगे उतने ही चमकदार हीरा हमको मिलेगी। इस बारे प्यार हुआ, इकरार हुआ सिर्फ 420 में से।

गाना दे और लता जी की आवाज में। जैसे आपसे बताए फिल्म 420 में निकली फैफ तखमी पिक्चराइज हुआ फिल्म। हाँ, ये गीत मैं अभी रोकती हूँ, ये बात आपसे कहना है, इसलिए मैं रोक रही हूँ ये गीत। Let up your manner, hurry up your ways। हाँ, अपने ही ढंग से अपना रास्ता कायम करो। तो मैं बताती हूँ, चार ऐसा जैसे आप सोच सकते हैं और जैसे चार किस्म के लोग हैं। तो पहला है जो ड्रीमर है, हाँ वो सपना देखते हैं। तो अगर ड्रीमर को सुनिए जी, ड्रीमर कैक नार मोखलक है इधर, ड्रीमर कैक नार मोखलक है इधर एन एरफारिंगन एन स्टर्क काउंटन फन ड्रीमर दी सेन। से सेन क्रिएटिव verbeeldings kracht hebben ze en reflectief zijn ze en ook nog gevoelig voor ervaringen. Ze allemaal sterke punten gaan. En de valkuilen van het dromer die zijn blijf hangen. Blijven hangen in hun ideeën en moeite hebben met keuzes maken, ook nog verlies in focus. Dat zijn de kenmerken, sterke en valkuilen van een dromer.

आपके लिए चुन चुन कर और लाया जाता है आपके सामने हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे दोस्तों। सही टाइम पे सही गीत चलाना कितना अच्छा लगता है और हम उसमें डूब जाते हैं। यादें जो है ताज़ा कर देते हैं। एर कॉम्प्ट अ मोमेंट दैट यू नीड हार्ड दर खात फैक्टन, ये बात तो सही है। एर कॉम्प्ट अ मोमेंट दैट यू नीड हार्ड दर खात फैक्टन मार टेलर खात लॉस लातन एंड लॉस लातन दैट इज सेर बलांगरेक द फरलेख्त यू खात अन हेले अंदर गफूलंस

ये टाइटल गीत आपके लिए पेश किया गया है जो 1951 में पिक्चराइज किया गया है, आज के प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है। मन्ना दे जी, रफ़ी जी, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, सभी जी जी यहाँ से हमको अपने ही

मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, जब मैं सूर्य उदय या सूर्य अस्त का जादू देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कोई भी बढ़ता हमेशा नहीं रहती है, कोई भी ना, और कोई भी रुकावट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मित्रों, इस हमेशा बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है मित्रों, इसीलिए समय के साथ चलें और जिंदगी के सफ़र का मज़ा लें। जिंदगी के सफ़र का मज़ा लो मित्रों। लीफ मैमसन अलसिक द माखीफान जोंस ओपखांग ऑफ जोंस ओंदरखांग जी बसेफिक दैट हीन ओपकोम्स परमानेंट इस en geen tegenslag lang duurt. Alles verandert in dit steeds veranderende universum, beste mensen. Dus blijf positief, vaar mee met de stroom van de tijd en geniet van de reis van het leven. Mitron, aur doston, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे मजबूत हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी निश्चिता विश्वास है, और सबसे प्रभावी दवा हंसी के मित्रों हंसी है मित्रों। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। अर्ध कमेंशन फॉर मे।

भाई बहनों, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन वे नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना देते हैं। उस विश्वास और यकीन को मित्रों जिंदा रखें, जिंदा रखें। मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खलूफ एंड खबैत जैन बैद ओन जिखबार मर जमाकन ओन मोहलक दिंगन मोहलक हाउ दत खलूफ en die overtuiging leven, beste mensen, en ga zo door. Sathiyon, agar tum peed nahi ban sakte, to jhaadi bano. Agar tum highway nahi ban sakte, to rasta bano. Agar tum suraj nahi ban sakte, to tara bano, tara bano. Kyunki ये तुम्हारे साइज से नहीं है कि तुम जीते या हारते हो। मित्रों, कि तुम जीते या हारते हो, तुम जो भी हो, जो भी हो, उसमें बेस्ट बनो, अच्छा बनो मित्रों, अच्छा बनो। लिफमेंस वेस अन स्ट्राइक अल्स ये गेन बूम कुन जैन एंड अल्स ये गेन स्नेल वेह कुन जैन वेस दान अन पथ अल्स ये गेन जोन kunnen zijn. Wees dan een ster, want het is niet door je grootte dat je wint of verliest. Wees de beste in wat je ook bent en doet, lieve mensen.

भाई बहनों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं, ध्यान करिए मित्रों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा में समा लेते हैं मित्रों, तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है, खजौंत हो जाती है, मन शांत और मजबूत हो जाता है, जिसे चारों ओर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं मित्रों, और शरीर को बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाए शरीर, ताकत मिलती है मित्रों। लिफमेंसन फमे वनीर वो खोच खनाद एन जेखन इंगन ऐत नोलखन एन ज इन ओंस जील ओपनीमन वर्त ओंस जील खजोन वर्त ओंस गेस्ट कालम एन स्टेरक वट लेड टू वेल विलेंडहेड इन ओंस ओमगेविंग एन वरक्रेग्ड ओंस लिखाम इमेंस क्राफ्ट वट मूई इस दिट टॉ Wat is dit toch mooi, lieve mensen. Dus ga zo door, ga zo door. Dosten, hum sabhi mein apne aur dusron ke liye shanti, sukoon ke saath saath stress paida karne ki kshamta hoti hai. Hum sabhi mein problem clear karne ke liye, mitron. Aur ye hamara nazariya hai. जो उनमें से एक को बनाता और पोषित करता है मित्रों, ध्यान करिए हम क्या बोल रहे हैं। और लिफमेंसन वे आलोमाल हैवन एट फरमोकन ओम जो वेल रिस्ट स्टिल्ट अल स्ट्रेस द क्रिएरन फॉर ओन सेल्फ एंड फॉर अंदरन एंड हैट इस ओन हाउडिंग द एन फन बेड ऑन द हाउड एंड फुट। ये हमारे में क्षमता है मित्रों, तो बुराई भी है हमारे में और अच्छाई भी है, तो इन दोनों में से हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी लेंगे हम, कौन वाला अच्छा रहेगा मित्रों।

दोस्तों, दयालु दिल बगीचे हैं, मतलब ब्लूम टाइन है। एक दयालु दिल बगीचे यानी ब्लूम टाइन है। दयालु विचार जड़े हैं, मतलब यादें हैं मित्रों। और दयालु शब्द फल है, दयालु कर्म फल है मित्रों। बेस्ट मेंशन फ्रिंदल का हार्तन जैन तैनन vriendelijke gedachten zijn de wortels en vriendelijke woorden zijn de bloemen. Vriendelijke daden zijn de vruchten. Pyare pyare bachon, samajhdari wo inaam hai jo aapko zindagi bhar sunne ko milta hai. Jabki aap baat karna pasand karte the. Mitron, beste en vriendelijke mensen, wijsheid is de beloning die je krijgt voor een leven lang luisteren, terwijl je liever zelf had gepraat, maar het wordt door anderen gesproken over jou. Goed of slecht, dat ligt in jouw handen. Jab zindagi aapko tootne aur rone ke sau karan de, to zindagi ko दिखा दो मित्रों कि आपके पास मुस्कुराने और हंसने के लाखों कारण है। मित्रों, मजबूत रहो, मजबूत रहो। बेस्ट मेंशन अल्स हैट लीफन यू हंड्रेड रीजनन गीफ्ट ओम इन टू स्टोर्टन एंड टू हाइलन लात हैट लीफन दान जिन दैट यू अन मिलियन रीजनन हैव ओम टू लाखन en te glimlachen, lieve mensen. Dus blijf lachen en blijf sterk. Blijf lachen, blijf sterk.

दोस्तों, हम खुश करने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना लेते हैं भाई बहनों, लेकिन अगर हम सबके साथ खुश रहने का फैसला करें तो ज़िंदगी सच में आसान, सुकून भरी और खुशनुमा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। मित्रों, आर्थ मैंसन वो माकन है उन जेल्फ मुइल दोर इधर इन तो फ्रीड इन तो विलन स्टेलन मर हैथ लीफन वो पास एक्ट मकलक ऑन स्पनन एंड फ्री द फॉल आल्सो एयर फॉर किजन ओम मैट इधर इन खलुकह तो जैन वात मोइस तो दे वात मोइस। दोस्तों, समय कभी हमारा इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं रहता, तो फिर हम हमेशा सही समय का इंतज़ार क्यों करते हैं? ध्यान करिए मित्रों, हम समय का इंतज़ार क्यों करते रहते हैं कि सही समय आएगा? सही काम करने के लिए कोई समय गलत नहीं होता है, और गलत काम करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनने बाद में बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बतलाया है। फ्रिंदन बेस्ट मैंसन द तेत वक्त नोइट ऑफ ओंस वारोम वक्त वेद अन ऑल तेत ऑफ एट यूस्ट मोमेंट एर इस नोइट अन फर्केत मोमेंट ओम द यूस्ट थिंग इन टू डू एन एर इस nooit een goed moment om de verkeerde dingen te doen. Denk hier eens over na, beste mensen. Denk hier eens over na, want wij zitten altijd met die gekke gedachten. Ating no boom, samai tik nae, het is geen goede tijd. Nee, de tijd is altijd goed. Wij moeten weten wat we doen.

मित्रों, किसी को माफ करना आसान है, सहज है, लेकिन उन पर फिर से भरोसा कर पाना एक बिल्कुल अलग कहानी है मित्रों, अलग बात है, मुश्किल हो जाए। बेस्ट मैंसन ईमन फरखेफन इस मकलक मर ईमन वेर कुनन फरत्रोवन इसन हील अंदर फरहाल इसन हील अंदर तोरी। दोस्तों, ज्ञान पर व्यवहार हमेशा भारी पड़ता है। कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां ज्ञान काम नहीं करता है अनेवरों को, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। आपके आचरण, आपके मनीरी, आपके संस्कार, वो वहाँ मायने रखता है मित्रों। बेस्ट मैंसन खदरख हिफ्त आल तेत अन फोर्स प्रों का हाथ ओकेनस एर जैन फेल सिटिवासिस वार इन कैनस तकोर्ट्स हित मार खदरख अलस ओप्लोस खदरख। भाई बहनों, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और सफ़र का मजा लो, जीवन का सफ़र का मजा लो। बेस्ट मैंसन द्रूम ख्रूथ ब्लेफ पॉजिटिव वर्क हार्ड एंड खनित फन द रेस फन ये लेफन खनित फन द रेस फन ये लेफन। बेस्ट मैंसन दैट इज अ मोई ऑफ लॉसिंग। क्या सही है और क्या गलत है।

चार वर्णों और आश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, और जो कर्तव्य से गिरा हुआ होता है वो छोटा हो जाता है। आइए इस भजन के माध्यम से सुनिए।

जिस प्रकार आकाश में वृक्ष जितना ही ऊंचा उठे उसकी कोई सीमा नहीं है, इसी प्रकार मनुष्य की उन्नति की भी कोई सीमा नहीं है।

जिससे दूसरों का हित होता है वही कर्तव्य होता है, और जिससे किसी का भी अहित होता है वो अकर्तव्य होता है।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलीग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें, हाँ, कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुनने वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेखास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतू, बीबी साहिबा रहीमक्स जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए। और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है। और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे हैं, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुन वालों, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी की कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफ़र करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों है, जैसे कि देनहाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देनहाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अर्नहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अर्नहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे है, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों। जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जया किशोरी जी की आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं, एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय। क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है, विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर सा गीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी, हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

0: afgezogen!
1: Mij wapens aunga. कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए हैं।

ग्रेट सॉन्ग हल्ला लो, जिसमें काम किए राम चरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधा दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूँगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कैसी मुलाकात है, मैं किस कुमार में हूँ। कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आ अब लौट चले। मैं चाहता हूँ तुझको दिल जान की तरह, फ्रॉम द मूवी प्यार जिंदगी है। अभिजीत और अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिलबर दिलबर फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम, और आपको सुनाने वाले हैं अलका याग्निक जी।

अभी आप सुन रहे थे दिलबर दिलबर अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम। फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है, गीत का बोल है दुपट्टा मेरा। अनुराधा श्रीराम जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दुपट्टा मेरा, और इस गीत के बाद ये सॉन्ग हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी धड़कन से आप सुनेंगे नाना करते प्यार तुम्हें से कर गई।

फ्रॉम द मूवी धड़कन से हमने पेश किए हैं। वही आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। निकम्मा किया इस दिल ने, फिल्म का नाम है क्या दिल ने कहा।

ईशान और संजीवनी भी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी क्या दिल ने कहा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। शर्ली जी जब कभी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली के वास्ते, झांझरिया उसकी खनक गई। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कृष्णा से।

अभी आप सुन रहे थे झांझरिया मेरी छनक गई, और ये गीत हमने पेश किए थे शिरली के वास्ते, जबकि शिरली भी ये प्रोग्राम को सुन रही है। बांध मेरे पैरों में पायलियां।

अभी आप सुन रहे थे बांध मेरे पैरों में पायलियाँ। हैया हो क्या मस्ती, ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के साथ में। उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अलबेला से आप सुनेंगे।

आशपी की आवाज में भी आप सुन रहे थे किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। काश भी एक बार फिर से प्रोग्राम में आ रहे हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो।

अंश बी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।

क्या गाना है सुनने वालों, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। वाह ई आई, नीले गगन के तले चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे नीले गगन के तले। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये गीत जो है वो सच्चाई की तरफ आपको ले जाएगी। और हम खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं भाई सुरेन भगवान दीन जी को, जिन्होंने ये गीत मुझे भेजा और मैंने ये गीत को ढूंढ लिया और ढूंढते ढूंढते आज आपके सामने मैं ये सॉन्ग ला रही हूँ।

अभी आप सुन रहे थे 50 साल पहले, क्या हकीकत है सुनने वालों। थैंक यू EI। बीचक दाना, बीचक दाना।

अभी आप सुन रहे थे निशा बी और अविंदा सिंह जी की आवाज़ में ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर डाना। उषा उत्तर पा रहे हैं प्रोग्राम में। चलिए ये हो जाए आप सभी के नाम।

वाह क्या बात है। उषा उत्तप जी आपको सुना रहे थे लंबादा। बेन पराख और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। आ भी जा माहिया।

अभी आप सुन रहे थे सविता सिंह और बेन पराख की आवाज में रात भर मेरी पायल छनकती है। सुनने वालों, जब गर्मी होते हैं ना तो पंखा की ज़रूरत तो बहुत होती है। तो निशा जी यानी निशा बी जी आपको क्या सुनाने वाले हैं बताओ? क्या नहीं बताने वाली, खुद सुन लीजिएगा।

निशा बी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, पंखा तो लाई दियो ना सजन जी, पंखा तो लाई दियो ना, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगेगा ज़रूर। पृथ्वी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, श्याम सुंदर गगरी।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर गगरी उठावे हमारे घरे मूंगे के माला। क्षमा करना सुनने वालों, उषा खन्ना जी आपको सुनाने वाले हैं मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है। चलिए मिलकर सुनते हैं।

क्षमा करना सुनने वालों, यशुदास और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुना रहे थे। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, फ्रॉम द मूवी साजन बिना सुहागन से हमने पेश किए हैं। और इसी गीत में अभी आपने सुने हैं कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें ऐसे ही अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए ताकि कोई दुखी ना रहे। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं सुनने वालों, लेकिन अगर हम कोशिश करें सभी को खुश रखने को तो क्यों नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। फ्रॉम द मूवी सफ़र से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सफ़र, से हमने पेश किया है जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। और ये सवाल तो होता ही रहेगा कि कभी ना कोई समझ पाया है और ना कभी कोई जान पाया है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी वो रुलाए।

अभी आप सुन रहे थे जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी वो रुलाए, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं और सुख दुख हमेशा जिंदगी में होते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप।

वही आप सुन रहे थे, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाव धूप। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम चलाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी

शोर से आप सुनेंगे जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ हो शाम। महेंद्र कपूर जी के साथ में मन्ना दे जी आपको सुनाने वाले हैं।

मूवी शोर से हमने पेश किए हैं जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। महेंद्र कपूर जी के साथ में मन्ना दे जी आपको सुनाने वाले हैं। पता नहीं कि कितने लोग ये फिल्म यानी ये फिल्म को देखे हैं, लेकिन इससे एक सीख मिलती है सुनने वालों कि हमेशा इस फिल्म में मनोज कुमार जी कहते थे कि जिंदगी में कितनी शोर है और एक हादसा हो जाता है उनके साथ तो फिर वो कभी सुन नहीं पाता है और एक छोटा बच्चा है और बच्चा तरसते हैं अपने पापा के प्यार के लिए क्योंकि उसका पापा सुन नहीं सकता तो वो लिख कर बताते हैं। तो कभी कभी जिंदगी में भी ऐसा होता है सुनने वालों कि अगर आप हमेशा कुछ कहेंगे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है तो ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं और जब वो सुनने लगते हैं तो बेटा बोल नहीं पाता है। यानी हमें कुछ ना कुछ फिल्मों से कुछ सीख मिलती है। तो जिंदगी में अगर आप हमेशा कहेंगे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं तो ये गलत है सुनने वालों। चलिए ये गीत हम पेश करते हैं किशोर दा की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी दूर कराही। जीवन से ना हार उजीने वाले हैं।

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname. Har kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabre aapko dena hai, aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahunfm.nl.
1: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं इश्तिहारे और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। किशोर दा आ रहे हैं प्रोग्राम में और गीत का बोल है, मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे किसी की खोज है। फ्रॉम द मूवी रास्ते का पत्थर से आप सुनेंगे।

फ्रॉम द मूवी पत्थर के सनम से हमने पेश की है। आशा भोसले और द माइती मुकेश जी की आवाज़ में भी आपने सुने हैं, मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे किसी की खोज है। सुनने वालों, एक सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने हैं वाले हैं बंदा परवर थाम लो जिगर। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर सभी नज़र होती है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर सभी की नज़र होती है, लेकिन दिल को साफ नहीं रखता जिस पर रब की नज़र होती है।

अभी आप सुन रहे थे बंदा पडवर थाम लो जिगर, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। आँखों में कयामत के काजल, चलिए मिलकर सुनते हैं।

महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे आंखों में कयामत के काजल, फ्रॉम द मूवी किस्मत से हमने पेश किए हैं। गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रहती है रुके रास्तों की तरह। प्यार का मौसम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं किशोर दा की आवाज़ में तुम बिन जाऊँ कहाँ।

अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊं कहाँ, ये दुनिया में आके कुछ ना फिर, चाह सनम तुमको चाह के। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है, इसी फिल्म से आप सुनेंगे लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं।

अभी आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती, पाना तो सब चाहते हैं सब कुछ, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती।

किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी हम रास से हमने पेश किए हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, मैं कहती हूँ जो अपने होते हैं वो झुकने ही नहीं देते। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी राजकुमार से हम पेश करते हैं।

किसी की जान को जाते हुए देखा है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुना रहे थे फ्रॉम द मूवी राजकुमार से हमने पेश किए हैं। इतने बुरे तो नहीं थे, इतने बुरे तो नहीं थे जितने इल्ज़ाम लगाई लोगों ने, कुछ किस्मत ख़राब थी कुछ आग लगाई लोगों ने, तुमने पुकारा और हम चले आए।

अभी आप सुन रहे थे तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। गर तुम भुला ना दोगे सपने ये सच्चे होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले कुछ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी और वो ये है, जवाब तो हर

फ्रॉम द मूवी यकीन से हमने पेश किए हैं गर तुम भूला ना दोगे, आपको सुनाने वाले थे लता जी। इतना है तुमसे प्यार मुझे, फ्रॉम द मूवी सूरज से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। और जरा सा हम देखें, जी हाँ, फिल्म का नाम है सूरज और मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं। चलिए ये गीत मिलकर सुनते हैं।

है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में, सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। अगर इंसान के दिल और दिमाग में बैठ जाए तो हर खूबसूरत और पाक रिश्तों की बुनियाद हिला कर रख देता है। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर।

अभी आप सुन रहे थे बहुत जताते हो चाह हमसे, अलका यग्निक और मोहम्मद अजीज मिलकर के आपको सुनाने वाले थे। प्रेम दीवाने है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते एक बहुत सा सुंदर गीत है। ये आपको सुनाने वाले हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और अलका यग्निक। चलिए मिलकर सुनते हैं।

फ्रॉम द मूवी प्रेम दीवाने से अभी आप सुन रहे थे मोहब्बत जिंदाबाद, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले थे गोरे तन से सरकता जाए, फ्रॉम द मूवी अखियों से गोली मारे। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

सोनू निगम, अलका याग्निक और संजीवनी मिलकर के आपको सुनाने वाले थे। मेरा प्यार का रस सरा, चखना और मखना।

अभी आप सुन रहे थे मेरे प्यार का रस जरा चखना ओए मखना। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी। इसी फिल्म से आप सुनेंगे आई लव यू बोल डाल।

अभी आप सुन रहे थे आई लव यू बोल डाल फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं मेरे सपनों का वो राजा।

अभी आप सुन रहे थे मेरे सपनों का वो राजकुमार फ्रॉम द मूवी हेलो ब्रदर से हमने पेश किए हैं। दोस्ताना है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से आप सुनेंगे देसी गर्ल।

फ्रॉम द मूवी दोस्ताना से हमने पेश किया है सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी जी की आवाज़ में भी आपने सुने हैं। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। फ्रॉम द मूवी जुदाई से हम पेश करते हैं।

प्यार हुआ प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। तीसमार खान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माय नेम इज़ शीला, शीला की जवानी।

अभी आप सुन रहे थे माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। और शीला के जवानी के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दबंग। ट्रेस से हमने पेश किए हैं मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोग को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारे प्यार भरिए राम राम नमस्कार, खुदा। Have a nice Sunday and take care of yourself.

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाउन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी अदाब, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम।

दिलबर के बाद हम फिर आ गए है हमारे दोस्तों। साहिब भैया सूरीनाम में पिस्तौल वाला बहुत ज्यादा हो गया भाई, और मिस ब्राइक भी करे हमारी जनता, मिस ब्राइक करे इससे इनकी उस सबके ये पिस्तौल है, तो सोचे हमसे बड़का कोई ना बिशी पीर के बारे में सुन लो। तो अब देखो एगो बॉन्स खबाऊ है, एगो बॉन्स खबाऊ है, और ये बॉन्स खबाऊ कहाँ है? ये बॉन्स खबाऊ है भैया ओ का नाम बा ओ वी ओ एस बॉन्स खबाऊ हुआ पे फरमुदलक भैया बॉन्स खबाऊआ में रोव भैल है दोनों दाख के रात के वैरक नहीं मच और खानी सासी जो श्री नाम कहेगा फान ओखम ओखम वैरक नहीं मच और खानी सासी श्री नाम के जो द्राम बारांद्र स्रख्त में है परमारिबो में हुआ पे एक अदमी चोटाई गए है भैया यहाँ बतावे गए है का बरस्तूर फर किसिंग रहा ओ वी ओ एस में जहाँ पे फक और खानी सासी है का एनर्जी बद्राइव श्री नाम के 11 तारीख सितंबर के बातचीत है। अब बोले एरिस फोरास नो खेन फरमान बकेंट से स्किट इंसिडेंट एंड हेल्प फॉर किसिंग अब जाने बॉन्ड की फरकीसिंग के बारे में एक मिला चोटाई गए हुआ दागी से हमारे जनता तो ये बात है गा बाकी तो के लगे हम जाए ला भैया भूपा उचल गए है लांटी में काम करे कर मुंह बहुत कमती खोले है जाने हरदम बोले एन श्री नाम एच एन रेस अब पाकी तो भैया एकदम मुंह में उकर पलाक बांध लग गए यास दास पहिर के चले है अब जाए के यहाँ मुँह कोली से भैया पाकी तो बोले है तुलो जाने एबीएस बोली से गा जो हुआ के एबीएस है गा लियो ब्रिंसवेग डायरेक्टर है बोले लांटी जो ने दे ना बोले बहुत अख्तर स्तंत है गा हम लोग के पैसा भरे के लांटी पैसे ना भरे बहुत ढेर कर्जा है लांटी दे ना खबाऊ के बारे में बोले पैसवा हमार कब भरिए मतलब कि हम लोग के एबीएस के बारे में तो एक बारे में पक्की तो गए है मुंह खोले जाने का बोले है नानी एंड पे स्टेफानो पक्की तो बीर फेल बोले रे आखिर करी से बोले ऑफ द डिस्क्रिशन अश्विन अधीन और लियो ब्रेंस ओवर द इलेक्ट्रिसिटी रिगनिंग फंड है ना बोले द टॉप मैन फॉर एबीएस इन द इंटरव्यू बोले क्रिटिक बोले से दियाना के पार्लियामेंटारियंस के बोले मिसमैनेजमेंट है एनर्जी बेदरिव एस्ट मुद नागन के दियाना से एगन बतालिंगसवरप्लिखनी तीगन ओवर द एबीएस नाकोम और बोले है गए देना मेर्दर खबावन है एन ख्रोत आंताल इरको सिस्टीम बांत तरवे स्प्राक सौ सेन फर अख्तस्तालग बतालिंग फन एबीएस अधीन स्प्राक दे तीगन और काम बोले एकर बारे पक्कतो बोले है पक्कीतो बोले है हेट गेवेल्डिग टू विंडन दैट ब्रंसविक सेन उत्स्प्राक हेफ गदान एन दैट हे जस्ट फन द लीडिंग फन द पार्लियामेंट हर फरवा दैट दिस गेडोक्यूमेंटेर्ड मेट बेवाइजन द बेवेरिंगन फन द एबीएस टॉपमैन सौ तीगन स्प्रेकन तो बतावे है पक्की तो अब जाए के पक्की तो मुंह खोली से भैया बोले ब्रंसवाई के लिए ब्रंसवाई के लेती अब देखो निकेरी की ओर जाए खेतिहर लोन के भैया पैसा ना मिलल है पैसा ना मिलल है अब एकर बारे में देना देना ले जो है रघुनंदन एकर बारे में रखे रिंग से बोले गो स्पूत ऑन सुख करवा हमार खेतिहर के बोले अब पैसा ना रहेगे फोलखंड सैसून में धान चीटे के बोले हैगा पैसा उस अपना पावे हैगा अख्तरस्ताल के बोले उस सबके चाहे तेल कीने के मशीन से आरबेस क्रख्तन कम करतन के भरे के और बोले वनियर फॉलखंस फॉर फॉलखंस यारन लंग बरीसन से बोले लीफर करीस इस सब धान बोले कान लंग बावर फॉलखंस हैं फिनाशियल फॉर लीड क्लेम को मंत जितन सब के ना बके ढेर पैसा ना पाई बोले ली फ्रांसिस बंकन एंड अंडरस्कुल एट्स मुदत इमस नेचुरली बताल फॉर द मेंस और
pensioen naar pauwe. Hij wil juist dat wordt gekeken naar de gevallen waar er achterstanden zich meerdere seizoenen hebben opgestapeld. Ketra dienstjuse pensioen naar pauwe. Regune nenbole. Dat wordt onderzocht of betrokken werk verwerker zich aan de geldende wet en regelgevens houden door verwerker dan waar onze paisana deze wanneer zou blijken dat de onderneming structureel hun verplichtingen niet nakomen mensen. तो हमारा खेतियर निकेरी के चाउर के बारे में हिया बताए गए भैया नीदरलैंड के दुआन का पकड़ी से नानी बारह हाट लगे बोले मैं बतावे के पड़े है भैया पिंडा में क्रैक इन पिंडा सुरीनाम दुआनों में कहाँ पाई से नानी कौन सी पाई से भैया नीदरलैंड से दुआन क्रैक आंखतरूफन इन पिंडा क्रैक भाई अन वोट फूड बेस्टक एक बारे में और बोले है En de fonds werd met de woordspelling bekendgemaakt. Douaniers zouden tijdens de controle heel verslavende pinda's hebben aangetroffen. De drugs waren volgens de mededeling creatief verborgen, maar vormden voor de medewerker geen lastige zaak om te cracken. De aangetroffen drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Ja, en hier betaalde ik, ik had crack met pawe, kokain met pawe, karabu met pawe, palem met pawe, झुरमचरी में पावे है फरोख्तू में पावे है कैश प्रोद में पावे है आंसीन वाला सिरखोत में पावे खुत में पावे नरियर में पावे पिंडा सांबल में पॉपकॉर्न में झुरमचरी में बाप रे बाप और कहा बोले है बीते हुए दिनों में इस पाई से भैया बम्बू में फ्लैश डेट में बलादर में पत्ता में पाई भैया ढोलक हारमोनिया में पाई से वीरोग में पाई से भाई का होए भाई धनी होए खांती नदमी इतना जबर है दुर्क्ष के बारे में हिया से हुआ पठावे है नीदरलैंड भाई अब देखो एगो बवाकर ध्रियन फेफ तक यार के सुरीनाम देश में पकड़े रहा पकड़ान है ना बवाकरवा चोर के पकड़ी से सिपाही बवाकरवा के पकड़ी से भैया एगो सेशन देर तक यार के औरत के इब फैले के आदमी फरकराख कर ले रहा verdenking voor verkrachting van een 36-jarige vrouw en ik heb het aanwezigen bewaker centrale hoofdstembureau van de Friedrich Derby straat Suriname ke, jahan pe kabole hega stembureau hai centrale hua pe bewaker raha 5 tarik september be bhaiya apan kaam pe bole hega voorgenaan op de werkplek we pe bhai de vrouw deed aangeven op een onderzoek in kader van een onderzoek werd de bewaker natuurlijk aangehouden. De kamoe pe bhaiya jahan pe oke chahi bewaker ke huwe pe jaike aur farkrakh kar de bhaiya ye baat hai jhamara Suriname ke jo shikari lon hai bhaiya jab dekho tadikyo social media pe bandook leke ja hai jungle mein ee daange u daage hai sport kare admi lon yani apan fasi sab koi khanit kare है लेकिन फोर्स एक तक रही है भैया तपाना होनी में तपाना होनी के बाद है भैया जहां पे जगहिया के को दुर्पुक नाम्बा गोदो गोदो होलो भैया गोदो ओलो बहुफन तपाना तपाना होनी खबीत में बा तब भैया शिकारी लोन गए लहा पिंगो दागे अपरे में दगा उवल कर ली से भाई पिंगो के झटका में हिया बतावे हेगा गए लहा पिंगो दागे भैया और ओ ही करमिया ओके दाग के मार ढाड़ी सोजे पिंगो दगली भाई द त्वे वारन है बॉस के इन खखान ओम पिंगो स्तयाखन तेदन यक्ष खोद इन फन हेन मेने यक्ष weer aan de ander raakte ook okay, legal hè op over de precieze toedracht en de identiteit van de slachtoffer zijn nog niet de pingo ke jhatka me apan mede yakhrwe ke daak ke aur maadhari se dosto ee bari dukh ke baad bari jabar aise lamua phino bhaiya fartrak kare lagal janta bahut dukh me bhai je un jund janta aur piwai nikh nikh
फिर SLM पे उड़ल और सबके बड़ी दुख फेसबुक पे भी आदमी बोले हैगा बोले हमने से SLM कम्युनिकेट ना करे है तो बोले एक घंटा बाद उड़ी तो दुई घंटा बाद उड़ी तो कब उड़ी तो फिर उड़बे ना करे है बोले वैसे ही लमान साथ में SLM से SLM फ्लिक जो ना पी वाई नी खनी फिर Amsterdam आवत ही लमाल का बोले अनुलेर हो गए हैं और बोले नहीं खा सितंबर के बोले टेक्नी से प्रॉब्लम है बोले पाशा सीस वारन आल इंच चेक फॉर ट्रैक 8 बजे इसे बोले उड़त भैया तू स्टेल एयरबस आदरी फिर तक जो बा स्काई केयर के बोले हैगा बुधवार के Amsterdam आवत फॉल्स है गदिल्ड फ्लुक्ट ओवर सिक लैंडेड द फ्लुक्ट आल फ्लुक्ट in Paramaribo in de avond zou het weer naar Nederland vertrekken. Incheck reizigers waren nog niet aan boord op het plein met naar buitenland, maar incheck kertjokala wat er precies met het vliegtuig aan de hand is en hoeveel tijd nodig is om het probleem te verhelpen is niet bekendgemaakt mensen. Ook is er ook geen nieuwe vertrekmoment aangekondigd door Surinaamse vliegmaatschappij. De Admiloon bhaiya apan joon jurma chiriyo chiri leke jatra तो झूर रहेगे मैं जो आदमी फ्रीसर ईसर के चीज लेके जात रहा ऊ सब आदमी के चाहिए फिर लौट के आवे के भैया एगो तीनर भाई सुरीनाम देश में खेलत रहा स्पेल टाइन लगे रहा एक चार मर्दाना ओके बरूफ करी से भैया एगो तीनर के ब्रोम फिश से बरूफ करी सेगा तीनर के और बोले एगो स्पेल टाइन रहा लीली दौरप वेक में सुरीनाम में और बोले हैगा ओके प्रोफेसर मन सुरीनाम ब्रूफ फॉर हिम ब्रोमफिश को ब्रोमफिश वो चुरा ले गए हैं और बोले 1700 ऐसा दी लुंडवा के पास रहा वो लेके चल गए हैं तीनरवा भैया वारे में दे स्पील टाइम आने ऑन स्पॉट टू द फरदाख्तन ऑफ टू ब्रोमफिश को आमन आनराइडन Op de volgende slachtoffer waren de mannen niet gemaskerd en droeg geen van hem een vuurwapen. Een van de slachtoffer, een 16-jarige jongen, verklaarde tegenover de politie. Kies op een welke bedrijf krisis het raas zou leken. Brom leken bhagge he. Lili dorp kisipahi. Onderzoekere al leken geile brandsoep weg met ghusel he. Hamari janta je baanchit he. अब देखो भैया हो खाद के तुलन जानो भैया अरे भैया बड़का NDP रहा एक दे सोशल मीडिया पे गिर गया रहा और सब कोई एक नाम धरी से मने दरासे था ढेर आदमी के ऐसे बोले हैं बैतलांदेश के बकरा बाची ही करे अब देखो हो खाद बारह दिन से कुछ ना सुना रहा अब हो खाद के भी अब मुआ कुलेले बोले दे मांग नो सब तक वे पीना बोले आदमी न जाने है कि हम लोग पीना करी लगा लूज फॉर हुकिंग 50% जो मा लंस दिनान तू तो कहने बतीकन फॉल्कंस रोनाल्ड हुखार जो फक बोंस ले इधर है बोले हैगा दैट मैन नीड नॉट एट फॉल के है स्टिल सेक ऑफ द फ्राग ऑफ द रेगिंग नीड वे द लंस दिनान पीनारन इन हेड लंग भैया मैं तो हूं तो बड़का NDP बाटे और तो हूं तो बाटे रेगिंग के बड़कवा और अपने आप के बोलिए सा एफ सा इना कुंद्रे दे मांग नो साबित तक वे पीनावन अपि दे नाम में ना बैठल भैया ता बहरे सब जरूर अब चिरैया गाना गाई दन कै के निमान निनार हेड फॉलो से कै के नार व्हाट से विल डून दिस व्हाट एर मेट ओंस गेबर्ड द पॉलिटिक हैव दा निस मे टू मेक एन अल्स मा सिक सेल्फ रेकन से हु हार्ड बोली से और ओही के पार्टे के आदमी तो आज बैठल है अब देख ओही के बोले हैगा काबल हु हार्ड ई आउट पूरा पुराना NDP parlementariër gaan, hoewel president Jennifer Simon aangeeft dat er momenteel geen financiële ruimte is om een hogere loonsverhoging dan 15% toe te kennen voor de landsmensen, landsdienaren. Tegen bole, hoe nadek je hem lukke trapina karela, bole, ino man lekwa sma di no abi yang uit tak ano mus yang, dus ik scheld de president niet uit, want ze heeft rommel overgenomen, dus ze doet haar best al, dus een vak ons leider, jane gatai kaart ke tel lagade ki na pira to, apu ke na deze santo ki ke deze bole tu rommel overlele he, maar joon se me pefe ya pe, ekje overle ra, tak konche ra bhaiya, khali so ना ऊपर ले रहा का भैया तो द रेगिंग फक बेवेकिंग सेन ऊपर इन कॉमन ओमर गमेंडे वर्कग्रुप इन टू स्टेलन बस्टांडे आउट 8 वर्दगर्स के बारे में तो
हमारी जनता हो खार्त के बान चित्रा सूरीनाम के बारे में। अब देखो भैया जाए लगो सुपर मार्क सूरीनाम में, चार आदमी अपन मुंह तोप के भैया मास्कर पहन के घुसल है, घुसल है वेस्टर्न फन सूरीनाम और बोले एगो वाख्तर के पकड़ के रात के सोमवार के और मंगल के रात के चार गो मास्कर पहन के ऊपर ऊपर मिस्टर करके हाथ गोड़ बांध के सुताए रहा भाई और जाए के दुकनिया में वो उनिंग एंड सुपर मार्क एंड पान में जाए के घुस गए हैं। द पुलिस तरफ द वक्त लातर फर्स्ट खबर ऑन द अख्तर बालकोन में होके बांध दे रहा, 4 बजे सवेरे के बात है और बोलेगा तुम सुपर मार्क ऐखना शोंग से एक बार पुलिस ब्यूरो निकेरी मेल तो निकेरी के बात है फरक्लार करे के वक्त रोम हम हेल्प हाथ हो रहे रूप ने फरमूदा दर इस एरस्तक आन हाथ वास फोल्कर द फरक्लारिंग फन वक्त रहा ने द फिर मान एंड हिम एक बजे रात के फर्रास करिस ओवर मिस्टर करिस है फोर्सियर ने दाना राम एंड ड्रोंगन फिया द ऑनस्टैंड द ओपनिंग द वोनिंग बिनन अब सुख ना द वार द फॉलो स्पिलन और बताएंगे ये सुपर मार्क वर्ड break werd doorzocht. De eigenaar en zijn gezin bevinden zich momenteel allemaal in Paramaribo. Bolle, het is vooralsnog onbekend wat de daders hebben meegenomen. Op de Nikeri rivier naar het pand en verlieten ze zijn locatie naar dezelfde route Suriname. Toen je maat hebben, ja, wacht er weken pakkerke banker deze ga. Je maat heb deko 10 milake pakkerse Kashmirstraat mee in val van de woning. Ja, wat eigenlijk hega Cuba ke ouderen hega onder wie tuigo Cubaanse. Op maar और एगो एडमिशन नाम के 8 तारीख सितंबर के आनखाउद कैसे का कश्मीर स्थान परमारीबो में बोले द एक्सी वेट एट को फॉर द मीडिया वर्कर सिपाही के टेप पायरा ऑन द स्टेनिंग फन एन रीग्यू एन एन रीग्यू बेस्टन टीम परमारीबो के बतावे गर फरमुदलक स्लाक्टऑफर फन इज अ मेंसा हैंडल करतरान ए मेंसन स्मोकल करतरान। Tijdens de inval werden meerdere slachtoffers aangetroffen. Zij zijn voor opvang en verdere begeleiding overgebracht naar de shelter van de afdeling. Tipje waren met ons tot de ijsebatia. Hem zo chitelijk ke hem ego orgiet sunai dee. Toen vier hem aanjaenge. और वो कौन सी गीत है हमारे यारे यारो हमारी जनता दारू पी के डांस के बारे में।

और सुबह की छौड़ी और हमें देर हो गया। ये सब सॉन्ग आज फिजी का जोंग मांच आप लोग को सुनाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया में वहां पे भी जैसे लोग भारत देश से भोजपुरी अपना लेकर चले थे तो वहां फूजी में भी लोग कुछ वैसे ही गीत को गाते हैं। तो आप जानते हैं रेडियो वाहन के पास आपको सब मिलते हैं। तो हमारे पास आपको कभी कभी नेपाली सॉन्ग मिलते हैं, कभी मॉरिशियस के सॉन्ग मिलते हैं, सुरिनामी सॉन्ग तो सलाह से सुनते आए हैं दोस्तों। लेकिन आज आओ चला जाए ऑस्ट्रेलिया की ओर, फिजी में लोग कैसे गीत को गाते हैं।

नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हरिओम। एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों। कौन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सबरावा प्यार नमस्कार, और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्ण दत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूं साथियों, ये अशोमी लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। 13 सितंबर 2020 सोमवार का ये अति सुंदर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लाइव अनेट फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बड़े स्टूडियो से। जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो, या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। अब हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी वीकेंड में ढेर फील लाइस्टर प्लेजीर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइस्टर फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट लाना ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे टाइम्स कंटोर उर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 073562247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 073562247। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों। नहीं तो vergeten है ons kwaliteit is altijd uw garantie en natuurlijk voelt u zich altijd lekker daarbij Fahon Hindustani Radio toch? हम से पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो खास करके रोसिता बहन जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश की। इस तौत्रिक से रोसिता बहन जी आप सभी को सदियों से सेवा करती आ रही है, ये अशोमीद है हमारे फूल टीम की तरफ से कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से रोसिता बहन जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक हैप्पी हैप्पी वीकेंड। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। कंगन तो छूट चुका होगा ना, जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ी आन पड़ा है, आप एक मातम में हो कमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है, और ऊपर वाले से हम सब मिलकर बीती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। ही फील्स डायरेक्ट में थी उस सिचुएशन से जो बीमार लाचार है, आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त है, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। यानी तो फरखीत है बंधु, जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी रोजाना सुनते रहना, और थोड़ा बहुत तो हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फन हर्त बीतर का कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, और हो सकता है कि आज कल या परसों आप कामयाब नहीं हुए किसी कारण, तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु, मोर्खे सर्वे रंदाख। इसी तरह अपने आप पर रोजाना थोड़ा और जोर तोड़ से कोशिश जारी करते रहना, और अपने आप पर विश्वास भी
जोर तोर से बढ़ाते रहना तो हो सकता है, और साथ ही साथ मेहनत भी जोर तोर से करते रहना तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आकर आपके कदमों को चूम सकते है। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी बंधुओं, ये तो हम लोग घरे स्कूलिया पर कमुआ पर सगरो सीख ली ना, नोई तो खीफ है वो तो खलेट नेफर गिफ प्रारणा सी सा सो सलो बिलो बी ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बिनंत फॉर हेट लेजरन। इसमें प्रवेश हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम फेन फकंसी। स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान देन हाँ शहर का तकरीबन 23 और 24 डिग्रीज के दरमियान था सेल्सियस, और थोड़ा बहुत धूप भी निकला था न्यू सितम्बेज ख्राइस कोर्द। तो जहां पर भी हो जी साल में हो प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। और साथियों प्रोग्राम का शुरुआत मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, एड फिल्म ललकार कंपोज बाय प्रोड्यूसर कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या छुगा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है साथियों, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है, और इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहां से कहते आ रहे हैं और सदा ही कहते रहेंगे कि अब तू ना स्टॉप द लीफ, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक हमारे सरनामी संगीत का प्रोग्राम। पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक, और तीसरा अध्याय में कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। बीच में कुछ ज्ञान के बातें है, शेर शायरी भी है, थोड़ा बहुत कराओके भी कर दूंगा आप सभी के जाते जाते। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। रफी साहब जी हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत।

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो। हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रवि साहब जी के मधुर आवाज में। तो साथियों, आज का इस हसीन शाम का प्रोग्राम जो आप सभी के नाम है, मैं शुरुआत करने वाला हूं हमारे सुरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार उस्तादों का उस्ताद श्री रॉबी उदित राम जी के ब्यूटी ब्यूटीफुल आवाज में। मेरे ख्याल से द मैन विद मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बैट गाना डायनेस्ट्री फ्रॉम सुरीनाम, द वन एंड ओनली मैस्ट्रो रॉबी उदित राम कह रहा है कि चलो हंस, वही है देश हमारा सुरीनाम।

शाबाश शाबाश उस्तादों का उस्ताद और हमारे सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार द वन एंड ओनली माएस्ट्रो रॉबी उदित राम जी। 13 मिनट गुजर चुका है 5:07 साथियों और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर हमारे देनाक शहर से और अति सुंदर साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हमारे सरनामी संगीत का। अगला बयान नौजवान कलाकार हमारे और इंडीज का रोहित महाबली को लाते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल नया नया सॉन्ग उनका धैया मोटिया क्या बात है ननद तोरे, बिल्कुल न्यू न्यू फन रोहित महाबली। मिलके सुनते हैं एंजॉयड सरनामी संगीत साथियों।

शाबाश जबरदस्त गायक हमारे ओरिएंटिस का मैस्त्रो रोहित महाबली के ब्यूटीफुल आवाज में ये सुंदर बयान न्यू सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुन रहे थे। हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, 20 मिनट गुजर चुका है 5 बजकर और आप सुन रहे हैं जोर तोर से सरनामी संगीत। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडिस का द बैठक गाना क्वीन है यार 80-90 2000 बिजानवती चैतू जी का ये सुपरहिट सॉन्ग जीनी जीनी।

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश हॉलैंडीज का द बैठक गाना क्वीन श्रीमती बिजानवती चैतू जी। 6 मिनट रह गया है 5:30 बजने में साथियों, अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं और लाते हैं मिस्टर हिलावे हिलावे को प्रोग्राम में, उस्ताद रविंदर भोला सिंह फ्रॉम सूरीनाम। बिल्कुल नया नया सॉन्ग निकाला है और अब कि हम न जानी ब्यूरफ्राउ वाले के काकरे जाए खोजे, ब्यूरफ्राउ से दिल आगे सुनिए।

क्या बात है, बिल्कुल मजेदार सॉन्ग भैया ही लावे। देख रहे तो उस्ताद रविंदर भोला सिंह जी के बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुन रहे थे, और ये भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो जो तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। साप्ताहिक प्रोग्राम 2 मिनट रह गया है 5:30 बजने में। अगला बयान एक जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश फनोंस रेस्ट डिस्ट्रिक्ट निकेरी का, ये उस्तादों का उस्ताद, और हम लोगों को याद दिलाते हैं कि ये जो पल पल बीते जा रहे हैं, उमरिया हम लोगों को आज है और बिहान नहीं रहेगा। धैंकरान है उस्तादों का उस्ताद सत्यानंद रेखा, पल पल बीती जात उमरिया, नाम शहर लीफ ड्यूट ओसो कौर है।

आज नौजवान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का मैस्त्रो कृष्णम छेरी जी का बिल्कुल नया सॉन्ग ना मानो मिक्स 100% लाइव। तो साथियों पूरे छोक का वक्त हो चुका है, यहीं तक था आज का हमारा पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का लेकर उपस्थित आ जाऊंगा आप सभी के खिदमत करने के लिए। और वो भी कुछ जबरदस्त सॉन्ग है, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। आफ्टर द ब्रेक साथियों, कहीं जाना मत है।

हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 13 सितंबर संडे आवन 2026 का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सरनामी संगीत का प्रोग्राम 5 मिनट गुजर चुका है साथियों, 6:00। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एन अतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सो सो लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एन अतुलक बदंत फॉर हेट लुस्ट्रन। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, देन कम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना, आप मात पर हम लोग ना कर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप श्रोताओं से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑन देश भर में नहीं मिलेगा यार। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल फॉर मंडे टू फ्राइडे टाइडेंस कंट्रोल यूर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स 07362247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07362247। जो भी रेडियो का काम होना, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। यू बीन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना। Hats off to all of you, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। बिनती नोख लिट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है साथियों, एंड सोश अलमाल वीत है वो ओक बाई फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो अंकारा ओक टीम waar heel veel omroepers en omroepsters live aan het zingen zijn voor jullie. Live op de radio en ook live in kleine en grotere zalen. Volg onze social media en ook die van de omroepers. Dan gaat u zeer zeker zien. Vooral aanstaande vrijdag hebben we een leuk optreden. Samen met Take a Chance bij Wanika. Volg Anil Sarju en die gaat u alles vertellen waar, hoe laat, hoe je moet aanmelden, et cetera, et cetera. Toen aap je aker, jelt, hem loka member bene, oro ko bhi benai. Sabhi jankari iske bar mein aap taar kare op 07362247. Dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider, dan en de only maestro Johnny Number One. Wabi aker jelt, hem loka member bene, oro ko bhi benai. एक एकदम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का, दत मीस्टल मेट सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुनते रहते हैं हमेशा की तरह। तो एक जबरदस्त सॉन्ग मैं रख चुका हूं, नोस्पांग रानी मी लव यू गुरु, From the live बैठक गाना महफिल सरनामी चटनी पार्टी सॉन्ग क्रिएटेड बाय AI टेक्नोलॉजी। मारत क्लिंट है लुक और मिलके सुनिए, नाचिए, कूदिए।

क्या बात है, आप तो सुन रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितना आगे चला गया है साथियों। दिस इज क्रिएटेड और आई टेक्नोलॉजी कुंस्मातिग इंटेलिजेंसी, maar het klinkt echt heel leuk hè. Misschien wordt dit de toekomst om muziek te maken. अगला बयान बड़ी दुख दीना सुनाने को जा रहे हैं, ऑल्सो अन सरनामी चटनी। और देखा जाए रीनेश राम गुलाम ने ये अति सुंदर बयान को सजाया है क्लिंट ओक ऑल्स एआई म्यूजिक।

Pranami संगीत maestro अरुण शिवदत्त जी का बनाया हुआ ये अति सुंदर म्यूजिक आप सुन रहे थे, मिक्स एंड मास्टर्ड बाय विकास लक्ष्मण। 18 मिनट गुजर चुका है 6:00 साथियों, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर सरनामी संगीत साप्ताहिक प्रोग्राम चल रहा है, और हम पहुंच चुके हैं हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का, जो नई स्टाइल सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुन रहे हैं। अगला बयान सरनामी धरती, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम सूरीनाम।

Beautiful song, wonderful song, apes, root, okay. Siwami, pishikyaga. Ja. Oude dikajai klinkt ook een beetje als AI technology, hè? अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं सुरिनाम देश का जबरदस्त गायक फ्रॉम द म्यूजिक फॉरमाशी शो टाइम और रहते हैं प्रोग्राम में शनिल नानू जी का सुनाते हैं आप सभी को सायारा से लम्हे तक

वाह क्या बात है, अति सुंदर सॉन्ग है, सयारा से लम्हे तक, फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मासी शो टाइम गाने वाला शानिल नानू के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुन रहे थे। एक मिनट बाकी है 6:30 बजने में। अगला बयान जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का नौजवान कलाकार शिवम राजाराम चटनी ट्विंटक सेशन ट्विंटक का रोलेट बेटी।

क्या बात है, शाबाश शाबाश नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंडीज का मैस्त्रो शिवम राजाराम जी का ब्यूटीफुल चटनी सॉन्ग आप सुन रहे थे। पंडित गुजरने वाला है 6:30 बजकर साथियों, तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दो लाइन शेर शायरी है साथियों, यही तो खूबी है दो लाइन शेर शायरी का कि इतने कम अल्फाजों में लोग पूरी कहानियां सुना देते हैं। चुप करने अर्ज किया है, जुबा मेरी जिक्र तेरा, जुबा है मेरी और जिक्र है तेरा, रूह है मेरी पर फिकर है तेरी।

तूने अपनी, ये कैसी पहचान बनाई है तूने अपनी, नाम तेरा आने पर भी लोग याद मुझे करते हैं। ये होता है यार, जिंदगी कभी एहसान नहीं होती है, जिंदगी भी कभी आसान नहीं होती है, मगर हर मोड़ पर कुछ जरूर सिखाती है, हर दर्द एक सबक बनकर हमें मजबूत बनाता है। जीना सिर्फ गुजारना नहीं, जीना सिर्फ गुजारना नहीं, समझना भी होता है यार।

लगाया था पूरी वफादारी से, दिल तो मैंने लगाया था पूरी वफादारी से, और मिला दर्द हर एक यारी से। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं और लाते हैं हमारे हॉलैंडीज का द लेजेंड और द लायन ऑफ बैठकाना उस्ताद का उस्ताद देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी को, और वो सुनाता है आप सभी को हॉलैंड्स बैठकाना लेजेंड देवेंद्र सिंह शिवनाथ मेक हिज ट्रिनिडाद डेब्यूट। मिल के सुनते भाई।

Wat hé, Hollands, buitengana legend Devinder Singh, जो त्रिनिदाद में अपना प्रोग्राम जब देने को गया था, उसी का ये एक छोटा सा लाइव रिकॉर्डिंग आप सुन रहे थे, अ ग्रेट आर्टिस्ट। अगला बयान आप सुनिए संदेश वन लोफ मिक्स, शनिल माडियो और फेलेडी फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी शो टाइम।

Yes, and this is One Love Mix by Chanel Mario and Valerie from the Music Pharmacy Showtime 2026. नौबरी टुडे क्या है साथ बजने में तो हमारा दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का एक आखिरी बयान आप सुनिए जबरदस्त कलाकार और ये रिकॉर्ड 1987 में रिकॉर्ड किया गया था और देखा जाए इन फ्रॉम द बेस्ट नंबर्स फ्रॉम शहीद वाहिद हुसैन ओइट ओप genomen en de Indian Diamonds die tijd op zijn best 1987 Oh My Love by maestro late swarge Shahid Wahid Hussain ji ke yaad mein aur unhi ke madhur awaaz mein ter afsluiting van een mooie Suriname sangeet programma.

अफवाह हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 3 मिनट गुजर चुका है 7:07 साथियों, रविवार रात्रि 13 सितंबर 2020 का ये अति सुंदर प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। सरनामी संगीत तो आप लोग सुन चुके, अब सुनिए कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एना तिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोसो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। एना तिलक बेडंक्ट फॉर हैट लाइस्ट्रन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें इश्तिहारे, डैंक अनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत से डाउन सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना अब मात पर हम लोग बुला कर और जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे बंधु, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा करते हो देख, सभी जानकारी बेल फन मांडा टॉट फ्राइडा टेनिस कंतोर यूर ऑफ द फॉल्कन द टेलीफोन नंबर्स कंतोर 07-362-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना डैंक अनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो इवेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोग के बारे में रेकलाम बनाते रहना है यारो, चर्चा करते रहना, और हो सके तो सेतंस हैप्पी भूफन ऑफ जैसे हम लोग बोलते हैं ढंढोड़ा भी पीट देना हम लोग के बारे, क्योंकि आप लोग है ना तो हम लोग भी है ना, मिलजुल के हम लोग तो काम करते हैं आप सभी के लिए। अच्छे अच्छे प्रोग्राम तैयार कर कर के हम लोग आते हैं और सुना देते हैं आप लोगों को, और आप लोगों को पसंद आते हैं इसलिए तो हम लोग अभी तक आते रहते हैं और साथ मिलजुल के यहाँ पर हम लोग चलाते हैं आप सभी के खिदमत में। तो आप भी जरूर हम लोगों के बारे में बातें शातें करते रहना। बैंतीनों के लिए फनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बीती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। और सभी जानकारी आप तो रोजाना हम लोगों के कोलिखस के जरिए और लाइस्तराज के जरिए सुनते रहते हैं ना। Want we hebben ook onze eigen karaoke team bij Radio Fahon. En we hebben ook links en rechts al opgetreden. Ook op de radio live opgetreden. Dus wacht deze maand, laatste donderdag vanaf 6 uur zijn we weer met onze volledige karaoke team van Fahon Hindustani Radio live op de radio. En natuurlijk kunt u dan Aker API. ये जो छोटा सा मोटा सा हम लोग का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार जो बनते जा रहे हैं, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 07-365-2247 पर, दा वर्ट यू डायरेक्ट डोर वर्बोंडन आर ऑनसे टीम लीडर द वन एंड ओनली मास्टरो जॉनी नंबर वन। तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और रो को भी बनाए, यू बेन फन हार्ट वेलकम। नहीं तो फिर खेते हैं आपको, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। एक बिल्कुल नई आवाज को मैं सुनाना चाहता हूं आप सभी को, और देखा जाए अन्नू मलिक जी के साथ काम कर चुकी है, और ये भी अन्नू मलिक जी का बनाया हुआ धुन। गाने वाली ईशिता विश्वकर्मा, विकी नगर का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान अगले जन्म में भी मुझको।

क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाई आप सभी को। इशिता विश्वकर्मा के अगले जन्म में भी मुझको तुम ही मिलना, कंपोज एंड अरेंज बाय मास्टरो अनु मलिक जी। अगला बयान जबरदस्त सॉन्ग है, इंडियन फैशन, लंबारा जी का मशहूर गाने वाली एड यार 70, 80, 90, 2000 अभी तक गाती है द ग्रेट उषा उठुप जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग जो रिलीज किया गया था इन मई 2020 में। लंबारा जो भी होगा देखा जाएगा द ग्रेट ग्रेट ग्रेट उषा उठुप।

What a beautiful song है श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया पुराने जमाने के ये जबरदस्त गायिका द ग्रेट उषा उठूप जी के ब्यूटीफुल आवाज में जाना पहचाना सॉन्ग लंबारा सोचना भैया देखा जाए ये का आगे क्या होगा ना वगैरह वगैरह श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि बड़का भैया श्री चंद्रसेन गंगा जी भी स्टूडियो में उपस्थित हो गया है हमारे बात आप सभी को वो खिदमत करने वाला है मैं सेन वेकलिक्स प्रोग्राम गीत और गजल ओ दिस गोल्ड तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो और देखा जाए ब्यूटीफुल सॉन्ग जो रिलीज किया गया है कुछ दिन हुए है बोल है आवारगी पे दिल और गाने वाला कंपोजर है गौरव माली जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग म्यूजिक दिया है महफूज अली जी ने तो मिलके सुनते हैं ये जबरदस्त सॉन्ग एट 2020 पिक्चराइज किया गया है इमरान हाशमी और दिशा पठानी पर

सुंदर बयान और दिख जाए महान संगीतकार इस जमाने का महफूज अली के साथ पर उन्हीं का लिखा हुआ अति सुंदर बयान और गाने वाला था गौरव माली और ये अति सुंदर सॉन्ग पिक्चराइज किया गया है महान अभिनेता द ग्रेट इमरान हाशमी और अभिनेत्री मलकाय हुस्न द ग्रेट दिशा पटानी जी के ऊपर। 6 मिनट रह गया है साथियों 7:30 बजने में। कुछ जबरदस्त नए नए सॉन्ग्स मैंने सेलेक्ट किया है आज का इस हसीन रात्रि के प्रोग्राम के लिए। तो अगला बयान इट्स वेरी न्यू हिंदी रोमांटिक सॉन्ग 2020 और पिक्चराइज किया गया है द ग्रेट एक्टर रणवीर के ऊपर और साथ उनका दे रही है मलकाय हुस्न द ग्रेट सारा अर्जुन। म्यूजिक एंड लायरिक्स बाय नगेश बिस्वाल एंड द सॉन्ग इज आल्सो सिंग बाय द ग्रेट मास्टर नगेश बिस्वाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में कितनी दूर हो। जबरदस्त सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

बात है, जबरदस्त सॉन्ग, कितने दूर और कितने पास पिक्चराइज किया गया है महान अभिनेता डकैत रणवीर सिंह के ऊपर, उनकी साथ दे रही है मलकाय हुस्न सारा अर्जुन। और ये इतनी सुंदर बयान को लिखा है, गाया है नगेश बिस्वाल जी, और क्या सॉन्ग है, बिल्कुल इस साल का सुपरहिट न्यू हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आप सुन रहे थे। अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है, निकाला गया है द फिल्म पाकिसा 1972, ओरिजिनल गजोंग डोर लता जी और कैफी आजमी जी के अल्फाजे है, उस जमाने के महान संगीतकार गुलाम मोहम्मद का बनाया हुआ ये जबरदस्त धुन। लेकिन ये जो रेट्रो ग्रूव है ना, चलते चलते का इन न्यू यश खिसेत दूर नतीरलक एआई टेक्नोलॉजी, मिलके सुनते हैं चलते चलते द रेट्रो ग्रूव।

चलते रेट्रो ग्रूव आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पाकीज़ा और शीनेल गसोंग और लता मंगेशकर कैफियस मिकेल फाजे और कंपोजर गुलाम मोहम्मद का बनाया हुआ ये थी सुंदर और मीठा धुन इन न्यू यश स्टोक दुर मिडल फन एआई टेक्नोलॉजी। साथियों वक्त हो गया कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। वन पर्सन आई विल नेवर रिमूव फ्रॉम माय हार्ट, वन पर्सन आई विल नेवर रिमूव फ्रॉम माय हार्ट एंड इट्स ऑफ कोर्स यू माय डियर। नियत जिंदगी में एक बात याद रखना, नियत अगर नेक हो जिंदगी में एक बात याद रखना, नियत अगर नेक हो तो अल्लाह कभी गिरने नहीं देता, ना किसी के कदमों में ना किसी के नजरों में। में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता यारो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। नील खुई और रिमेंबर दैट। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना यारो, कोई किसी का खास नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं, लोग तो तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। Share. I still miss you every day, but I will not text you because I feel I am not an important person in your life anymore. Amen. तो ये था कुछ आखिरी शेर्स आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान की तरफ लेकर चलते, एक जबरदस्त सॉन्ग है साथियों, सजा लगती है, कंपोज बाय गौरव अमाली और यति सुंदर बयान को खुद गाया है महान संगीतकार महफूज अली के लिखा हुआ और उन्हीं का बनाया हुआ ये अति सुंदर धुन। मिलके सुनते हैं स्पेशल कॉम पिक्चराइज्ड गया है महान अभिनेता शहीद कपूर और अभिनेत्री जाह्नवी कपूर जी के ऊपर, बिल्कुल न्यू सॉन्ग है, मिल के सुनते हैं सजा लगती है।

जबरदस्त सॉन्ग है 2026। महान गायक और कंपोजर इस जमाने का माएस्ट्रो गौरव मली के ब्यूटीफुल आवाज और उन्हीं का बनाया हुआ ये धुन, कंपोज एंड अरेंज बाय म्यूजिक डायरेक्टर महफूज अली, और अल्फाज भी महफूज अली जी का था। 14 मिनट बाकी है साथियों 8 बजने में, और धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहे हैं, लेकिन कुछ और सुनाने को जी चाहता है, और ये एक ब्यूटीफुल रीमिक्स रेट्रो बॉलीवुड बॉलीवुड रीमिक्स सॉन्ग 2026। और देखा जाए एक जबरदस्त सॉन्ग है एड फिल्म तीसरी मंजिल, ओरिजिनल गसॉन्ग डोर आशा जी एंड रफी साहब, एंड इट इज एन रेट्रो मिक्स एट बॉलीवुड हेडनदास म्यूजिक, फॉलोस में ओक एआई टेक्नोलॉजीज में भी यूज किया गया है। तो मिलके सुनते हैं जबरदस्त रिमिक्स बस बूस्ट पार्टी, ओ मेरे सोनारे सोनारे।

Hier is Sona Retro Bollywood Remix 2026 met AI Technology. Nou saathio, wacht bij dhire dhire kariba gaya hai ek kleine versie van dit prachtige nummer uit de film Hera Peri 3. Omeri Zohra Zabin with een remix version आप सुनिए और ये साथ ही साथ आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में आखिरी बयान न्यूट मार 2 मिनट और लेट ऑफ

Hera Peri 3, een korte versie, remix van Omeri Sohra Zevin, also used by AI Technology. तो साथियों, धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। वहीं तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। यही अशोमीर लेकर घर को जा रहा हूं साथियों, कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार 8 बजे रात्रि में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम लेकर। हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है बड़का भैया श्री चंद्रसेन गंगा जी मेडसेन प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड। तो मुझे आप सभी इजाजत दे और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ न कुछ गुनगुना देता हूं आप सभी के खिदमत में। आदत से जो मजबूर हो गया हूं ना।

जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज की लय इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों को सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है फाउन एफएम इंटरनल पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीब 3 मिनट व्यतीत हो चला है 8:03 पर अख, और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है दनहाक शहर से। जो बीमारी लाचारे तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई वही उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश। मुझसे पहले कार्यक्रम आप सुन रहे थे भैया सुरेन भगवान दीन जी का। भैया सुरेन बहुत बहुत धन्यवाद आगाह करने के लिए। आपके एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की तरफ से और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से भी आपको एक शुभ रात्रि भैया सुरेन जी को पेश किया जा रहा है। जोंदख 13 सितंबर है, जी हाँ 13 तारीख सितंबर है, रविवार है, आप तत्पर है। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह होगी शाम होगा या रात्रि होगा, आप सबका हृदय से स्वागत कर रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा दनहाक शहर नेदरलैंड्स। रविवार है तो इसका यही मतलब है कि गीत गजल के कार्यक्रम लेकर यहाँ उपस्थित हैं हमेशा की तरह, और आप तार कर सकते हैं 9 से 5 तक 3 5 से 7 तक 2 2 तक 7 फिर तक या तो 9 से 5 तक 3 2 7 तक 2 तक 7 से 7 तक। आज भैया यूसुफ नहीं है, क्योंकि भैया यूसुफ का परिवार में कुछ घटना हो गई है तो वो सूरीनाम गया है, तो यूसुफ नहीं है, मैं अकेला हूँ। उम्मीद है आप तार करोगे और तो मैं ही उठाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ बातचीत होगा, फिर बाद में फिर देखेंगे। तो लीजिए रात्रि का कार्यक्रम है, हम शुरुआत कर रहे हैं ये शानदार गीत से, जिससे मैं आप कोशिश कर रहे हैं वो तार करने को। 9 से 5 तक 3 5 से 7 तक 2 2 तक 7 फिर तक या तो 9 से 5 तक 3 2 7 तक 2 तक 7 से 7 तक आप सुनिए ये गीत।

मैं थी मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस, मेहंदी लगी मेरे हाथ निगतिन तुम्हें सस्तक 1962 का ये गीत हम आपको सुनाए और फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि आज सोंदक गीत गज़ल के कार्यक्रम में पेश कर रहा हूँ, 13 तारीख सितंबर है और आप तत्पर होंगे। आपका हृदय से स्वागत है एक बार फिर।

गुनगुना रहे भंवरे खिल रहे हैं कली कली रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, तो क्या ख्याल है कर जमा आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है।

0: वाह क्या बात है। फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपने सुने निसुल्तान आ रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है लाइन पर कोई है, एक मिनट।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो उर्शिला, आलस कुछ नहीं उर्शिला?
2: या या या प्रीमा हुआ है।
1: अच्छा उर्शी एक फ़ा पकड़िए, अच्छा एक और लाइन पे है, एक मोबाइल।
2: या या उर्शी।
1: फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफ़ंद। हाँ हाँ रेखल, हाँ हाँ ओके या क्लॉप अतांग सर हाय। हाँ हाँ ब्रो उर्शी।
2: या
1: कैसे रही ले?
2: मोई हुआ
1: है आलस कुछ।
2: जिंदगी के राह हुए सनम हसी जवान खोया खोया चांद
1: क्या बात है?
2: अपने प्यार के सपने सच हुए।
1: ये खोए खोए चांद मैं देवानंद की फिल्म है।
2: या तो सर मुझे नहीं मरो
1: या सही ना अलमा प्रैक्टिस करने में
2: एक दिन बेस्ट इधर की सांग रेस मार एक एक दिन
1: दून अलमा ऑन्स बेस्ट यू सी
2: एंड बीच में तो इसलिए दिस इस फॉर मी लाइक द ऑनस्पैन म्यूजिक फॉर मी हॉल
1: दैट इज सीकर
2: दैट हाउ आई एम बेसिक मैथ म्यूजिक
1: गाना जोड़े है बिटोरे है ऐतलकार करे बुलावे ना उदत सालस गाना बहुत काम करे है
2: एक से ना बन लई कर एक हमेर फॉर और नहीं मत होते थे
1: दैट इज इन दैट सो नो कौन है बीच खोज बीच खोज
2: या
1: दर मुझे दान इफ कोई से खा मार के
2: नहीं ये मुझे ook van houden denk ik ja het is wel gezongen maar dit die oude nummers hebben wat weet je wel
1: doet je wat
2: Ja, precies wat je zegt, ja. Kan we nou bellen, kan je de aardjum eigenlijk garen? Weet je toch? Of jullie een bel hebben vandaag, of niet meer? Tolong dat jij het dan eens vaker, ja, je moet bezig, anders zit je aan het achterrijden.
1: Heel toevallig vorige week kwam naar jullie. Onze excuses.
2: Geen idee. Of dan is het theater, zeg jullie, oh, nu ben ik thuis, of om jij een bel garen.
1: Dat is niet goed, zo zie je.
2: Nee, ja, nee.
1: Ja, nee.
2: Kijk, ik ben iemand die trouw luistert natuurlijk.
1: Dat weet ik. Alleen kon ik geen melding van maken naar mijn luisteraars toe.
2: Is je assistent er niet vandaag dan?
1: Nee, haar assistent ke bahnoi guzarge Suriname me, Yosef ke. Dus hij is al in Suriname, dat was vrijdag al.
2: Oh ja, dat kan gebeuren hoor, ik weet. Ja, de dood ken ik wel hoor. Ja.
1: Hij komt over een paar weken weer.
2: Oh,
1: natuurlijk, ja. Ik heb nog een beetje gekregen, als alles een beetje achter de rug is.
2: Ja, natuurlijk, kan gebeuren, hè.
1: Ja.
2: De dood gaat bij iedereen
1: heel
2: kloppen,
1: plotseling keer, is het gebeurd zoals hij vertelde.
2: Ja, ik weet alles van, hè. De dood heeft bij mij ook al lang
1: geklopt.
2: Zo is het leven eenmaal.
1: Ja. उन्ना आगे रह के आधा स्केयर कर ले कि ये लमास स्केयर कर ले आज मैं मुंद दफाई में ही
2: या इस तब से कसम एक भी नहीं बात एक मुझे खोलो फिर मैं जाने लग जा एक भी
1: कुछ भी स्वास्थ्य चाहिए करे के
2: या
1: तत्र ईमान इस
2: या
1: प्रसिद्ध तब से मैं एक दूं मैं बेस्ट उम्र और ये
2: बताओ कौन कहा वो तो
1: नहीं अच्छा बताओ कौन गाना मांग रहे सुने
2: देखो तो
1: लाखों है निगाहों में फ्रॉम महेंद्र कपूर
2: या दी सिंग मोई दी हैव गो कजोंग ऑफ एंड दैट हेलीमा
1: मोई तो अपना वाला बना ले
2: या आई हैव ऑलस अपनोमा
1: ओ अच्छा अच्छा तो एक दिन सुन लेबे हम लोग नहीं खुद ओके फ्रो एर्सी थैंक यू वेल और कुछ हची इट्स दरान तू तो फको नो
2: Nee hoor. Ik vind het fijn dat ik kon inbellen vandaag. En leuk jullie stem te horen ook.
1: Wij ook natuurlijk.
2: Ja, zeker weten. En ik ga zo door, wil ik zeggen.
1: Dankjewel, Lucy.
2: Tja. Tot volgende week, denk ik.
1: Tot volgende keer, ja.
2: Ja, heel fijne uitzending. Ja, groetjes hè.
1: Ja, jij ook een heel veel luisterplezier.
2: Ja, ja.
1: En tot de volgende keer.
2: Ja, dankjewel.
1: Dag, Ursula. ये थी अर्शिला जी रोटरडाम के रहने वाली और दोनों तार इस वक्त खाली आप तार कर सकते हैं 07 3 65 20 20 47 या तो 07 3 20 77 जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार का नंबर ढूंढने के लिए लिखने के लिए बहरहाल आपको आपको पता होगा तो हम आपको सुनाते हैं ये गीत आ रहा है जवानी दीवानी में से 1972 का ये फिल्म किशोर कुमार और आशा जी

आर डी बर्मन के साथ पर एवरग्रीन किशोर कुमार जी और आशा जी आपको सुनाए 1972 का ये फिल्म में से निकाल कर जवानी दीवानी में से। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और लेकर आ रहा है देखा जाए तो बप्पी लहरी जी। बप्पी लहरी जी खुद अपने साज पर आपको क्या सुना रहा है, चलो सुनते हैं।

0: फिल्म सत्यमेव जयते में से निकाले हैं बप्पी लहरी के साज पर, बप्पी लहरी खुद आपको सुनाए। जरा देखो लाइन पर कोई है, फोन हिंदुस्तानी रानी है यहाँ पर।
1: या तो बेया
0: दखमपुरो बेया कैसे रह ले?
1: हाँ हाँ अच्छा रह ले।
0: तब मोई खुशी के बाद तू बैल कर दे ले।
1: हाँ हाँ हमली गंगा है ला बैल कर दे
0: हिन्ना
1: तब भूल कबो ना हो पावे है
0: नी दर सिंदर दाच या फोर खवे एक बार होता नी
1: या या
0: ऑल्सो एक्सक्यूजेस ना तू लग बगिया बाटी बाटी
1: ठीक तो नहीं इतना दाई तो करे अटकान आलते नहीं तो
0: यानी कुछ ना कुछ कभी कभी आ जाए तो।
1: हाँ तो
0: ऐसा बात तो होगी तो
1: ऐसा ऐसा मोई है तो इतनी से कभी हो जा।
0: मैं या खलो को खमा प्लानर वा बोले अच्छा रही खले गंगा तू जा। हाँ नहीं ये बोली ना तो के चाहिए आवे के तो आवे पर तो डांट टेलीफोन होता ही थी वाल
1: या
0: मुफरों बे या बताओ कोनो कहाँ हो तो धल ले बच्ची
1: कहावत
0: ना धल ले हैं
1: ना ना
0: अच्छा कोई बात ना है तो सर
1: नहीं जन्दो करेला और लास्ट टाइम जो बोलिए तो वो बोल जाएगा
0: ले ना तो आगे से लिख के धल लिए मखेब नहीं
1: बस ठीक है
0: फॉलो द केयर या प्रॉब्लम। अच्छा भैया कौन गाना से आज हम लोग तो खुश कर सकते हैं?
1: वो गनवा है हर घड़ी बदल रही है ये जिंदगी,
0: हर घड़ी
1: घड़ी बदल रही है ये जिंदगी,
0: हाँ रेखा
1: ठाव है कभी कभी धूप जिंदगी
0: नए प्रेम
1: हर पल जहाजी भर जियो।
0: तो तब तो गानों का ना हम गोरी ला नहीं ले
1: तू गंगा
0: नहीं कौन जाने
1: तू तो
0: भैया थैंक यू वेल
1: दा फैन आफत गंगा।
0: ये थी बेया जी उतरह के रहने वाली। तो अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है चलो देखते हैं उर्शीला जी। उर्शीला जी रोतरदाम के रहने वाली है। उर्शीला जी के ये लिए ये गाना हमने रखे हैं, बस सिर्फ बटन दबाना बाकी है, प्लेयर में रख चुके हैं। रोतरदाम के रहने वाली उर्शीला जी के लिए उर्शीला जी शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए आपको भी इस तरह से हम आपको सुना रहे हैं आपकी मांगी हुई गीत। बस आप इत्मीनान से बैठ जाइए और सुनिए।

ओपी नैयर के साज पर रफी साहब की आवाज में हमने पेश की फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ में से निकाल कर, और ये गीत चला रोटरडम के रहने वाली अर्शिला जी के लिए। अर्शिला जी, उम्मीद गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। आपके लिए जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी म्यूजिक है, जानी पहचानी आवाज है। अर्शिला जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है मैथिली मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला है।

याद रहेगा, प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। ये शानदार दिव्यता आपको सुनाए हो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत सुनाने वाले विज्ञापन से पहले, वो है उत्तराखंड, उत्तराखंड के रहने वाली बेया जी। बेया जी, आपको भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया जा रहा है, आपने भाग ली गीत और गज़ल में। उत्तराखंड के रहने वाली बेया जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए बेया जी इस तरह से आपकी मांगी हुई गीत।

0: फिल्म कल हो ना हो के ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए हैं। और गाना को मांग करने वाली थी इतरा के रहने वाली बिया जी। बिया जी, उम्मीद गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हमने चलाया है। बिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद फाम हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। चलिए जी, नहीं हम नहीं चलेंगे कहीं, क्योंकि समय हो रहा है विज्ञापन एवं न्यूज़ का। बस चलिए यहाँ से पेश करते विज्ञापन और न्यूज़, उसके बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Waarom Hindustani Radio?

0: फिल्म आबरू में से निकाले हैं ये प्यारा गीत मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस निगति अख्तशस्त्र का 1968 का ये गीत है सोनिक ओमी के साज पर। जहाँ तक मेरा ख्याल है लाइन पर कोई है। फोन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंद
1: खुदनाफंद
0: खुदनाफंद भैया ब्लैक लाइट से ना धरिए अच्छा इन मोमेंट। हेलो
1: या हेलो
0: या खबर भैया खुदनाफंद कैसे रह ले?
1: हाँ अच्छा रह ले
0: सब कुछ मोई
1: ना एक बस ना देगा हमसे जो तू भी हुआ आई है
0: कहाँ
1: बस पर दिवस इस मोर होता पर्व दिवस
0: कौन पर्व दिवस
1: आज आसान मंदिर में रहा फीरिंग हम सब जितु भी आई है।
0: ओ ना ना ना आज हम के बहुत
1: पूरा लोग आज फीर कर रहा।
0: ओके
1: या बस हेल्प दर
0: ओके नहीं मोई एन तो असल एक
1: या सही तो सही कर बस लोग या मैं सही तो ड्रिंक आलस को सेला एंड देंगे से आउटराइकिंग मैं से जोन ने हिंदी लेस वहाँ पर है हैं सबके आउटराइकिंग रहा
0: और डिप्लोमा आउटराइकिंग
1: या बस है लोग
0: नहीं मोई तो
1: हाँ तो हम सोचे साइज अभी हुआ आयो
0: ना ना ना सोंदा के को लास्ट तक दिन रहे हमारे खातिन
1: ओ या मत ऑप्शन आउट नो देखें फॉर्म थोड़ा तो
0: ना ना आउट नहीं देखूं मारा फन भी वासत ऑफ दरवी इसत
1: या मत सोम स्काई नहीं थे
0: ना तो के और खानी शेयर करे आसान ऑफिस में तो अंदर
1: हाँ आज मत थोड़ा
0: ओ अच्छा ओके नहीं प्रिमा
1: पंडित बीरे
0: ओके ओके नहीं और कुछ नवा हाल भैया और कुछ नवा हाल
1: और कुछ नवा हाल हाँ कौन कुछ नवा हाल हम बताए
0: बोल
1: आधे नवा हाल रहे हैं।
0: अच्छा उनमें से एक को बता दे उनमें से एक को बता दे
1: उनसे एक को बता दे कौन सी बताए नवा हाल एफकाई को हो कौन सी बताए नवा हाल
0: अच्छा कोई बात ना वह पूजा के समय खसिए है राई यहाँ खीब अच्छा अच्छा पता अब भैया कौन गाना मांगत रहे सुने
1: धन्दे में तो हम बोलो कि दत दत हाथे कौन से हम
0: या अच्छा बताओ कौन गाना मांगत रहे सुने
1: भैया ना दल कलीच इस क्या का मालिच कहाँ है
0: का ओह बिकल का
1: लिच भी सब सब कुछ लाश हो जाए हैं एक अपन के चल
0: हाँ हाँ बोल
1: तेरे तस्वीर को हम
0: क्या हुआ
1: तेरे तस्वीर को हम दिल से लगा लेते हैं
0: और आगे यानी तेरी तस्वीर को हम दिल से लगा लेते हैं बारा क्या बात है शाबाश वो भी ठीक है
1: वो भी ठीक है।
0: अच्छा बाकी जो है तो खोज खाज के धल रही है नेक्स्ट वीकेंड भैया बताओ वेल क्लिप कैन वे योर फनाफंत ब्लेम आ के बताओ
1: कुछ बोला
0: कौन गाना से तो कि हम लोग खुश कर सकेला आज
1: या दिली च
0: कौन गाना
1: तेरे तस्वीर को हम दिल से लगा लगा लेते हैं
0: तो गाना बोल दे फिर गाना को तेरे
1: तो
0: तस्वीर
1: हां तेरे तस्वीर को हम दिल से लगा लेते हैं
0: दिल से
1: देना सिंह तो तू है दी फ्राउ चुनाव दी संगरेस वेट फॉर यस
0: कोनो फ्रॉग आई से
1: हाँ एंड एंड तो सम डू वेट बैंक इट
0: ओके एंड ऑन फॉर एक हेयर कैन दैट नीड ये लग सक मार एक खूब तरह कम काम फिर
1: हाँ गसल इसम गसल
0: ओके तेरे तस्वीर को हम दिल से लगा लेते हैं
1: या
0: अबू इस खुदन भैया नो द मैन शिक्के फाइन आवंट भैया
1: या
0: ओके एंड हेल फील लॉयसर प्लेसिर
1: या सही कर
0: एंड टिल नेक्स्ट वीक
1: या
0: Yeah, okay.
1: U ook en bedankt en een fijne avond.
0: Ja, dankjewel Bea.
1: Tot de volgende keer.
0: Zeker weten, dag. Ye thi Bea ji, Bea Gujarat ji, Den Haag ke rehne wali. तो अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो ये है इस तरह से

फिल्म चोरी चोरी में से निकाले हैं लता जी और मन्ना दे जी मिलके है आपको सुनाए शंकर जय किशन के साज पर। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है देखते हैं इस तरह से क्या ख्याल है।

दुनिया में ऐसा कहाँ, सबको नसीब है। लता जी की आवाज़ में फिल्म देवर में से निकाले हैं, रोशन के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए प्लेयर में हमने एक गीत रखे हैं, वो जी है लता जी की। लता जी की एक गीत का वर्जन जो है यानी रफ़ी साहब के वर्जन आप हमेशा सुनते होंगे, इन मोमेंट रफ़ी साहब का वर्जन आप हमेशा सुनते होंगे, लेकिन हम आपको सुनाते हैं आज लता जी की भाग इस तरह से आ रहा है, हम आपको सुनाते हैं लता जी की भाग।

0: अकेले है चले आओ जहाँ हो, लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये गीत। रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन लता जी का कम चल रहा था इसलिए हमने सोचा चलो आपको ये सुनाए। देखते हैं लाइन पर को है, एक मिनट। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो खुदना आफंत
1: भाई,
0: भैया चांद नमस्कार। एक मोमेंट धल्य रफ न धरिए या भैया चांद नमस्कार, कैसे समाचार है?
1: अच्छा भाई,
0: सब कुछ मोई थकाई उतरल
1: जी? हाँ
0: अच्छा मोई मोई अच्छा भैया चांद
1: कैसे चले?
0: बस एक को चांद धीरे धीरे कौन गाना पहले गाना वाली लिखवा ली, कौन गाना मांगत रह लो?
1: एक परदेसी मेरा दिल ले गया,
0: एक परदेसी मेरा दिल ले गया, वाह क्या बात है, शाबाश मोई। अच्छा अब बताओ कुछ कहा हो तो धल्ले कि अब थकाई है?
1: ना वैसे कुछ ना अब
0: ओके नहीं प्रीमा। अच्छा ना रही खल है। अच्छा तब बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।
1: हाँ
0: हाँ
1: और सैना
0: डंक के बैल ब्रूर ऐसे ही रही।
1: अच्छा अच्छा भाई,
0: अच्छा वादा को मुताबिक सब कुछ ऐसे ही रही।
1: हाँ अच्छा
0: नमस्कार,
1: राम राम
0: राम राम। ये था श्रीमान चांद रघुनाथ अल्फनंद रेन के रहने वाला और उनकी धर्मपत्नी खिसला, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देनहा के रहने वाली बेया जी के लिए। बेया गजराज जी, आपकी मांगी हुई गीत हम लोगों को मिल गया है, चलिए हम आपको सुनाते हैं। और ये अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह ये दोनों मिलके आपको सुना रहे हैं इस तरह से देनहा के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए। बेया जी ऑल्स टू ब्लीफ।

तेरी तस्वीर को हम दिल से लगा लेते हैं। अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह आपको सुनाए निखिल विनय के सांझ पर फान हिंदुस्तानी रेडियो के गीत और गज़ल के कार्यक्रम में। और ये गीत के मांगने वाली थी देना के रहने वाली बेया गजराज जी। जी हाँ, बेया गजराज जी, उम्मीद है गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने चलाए हैं। बेया जी, आपको भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले वो है अल्फानंद रैन। अल्फानंद रैन के रहने वाला श्रीमान चांद रघुनाथ, श्रीमान चांद रघुनाथ उनकी धर्मपत्नी खिसला जी के लिए। तो भैया चांद रघुनाथ जी और खिसला जी के लिए चलिए ये गीत हम पेश करें फिल्म फागुन में से निकाल कर। शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चांद जी और खिसला जी।

0: कौन परदेसी मेरा दिल लगाया, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ओपन एयर के साज पर हम आपको सुनाए हैं। और ये गीत चला अल्फा नंदरैन के रहने वाले भैया चांद रघुनाथ, उनकी धर्मपत्नी हिसला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए हमने पेश की। भैया चांद और हिसला जी आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत बस चले धीरे धीरे ऊपर वाला के दया से आप लोग की कृपा से। कैसे भैया मंसूर के हाल मोई?
1: अच्छा है, सब कोई अच्छा है।
0: तब मोई मोई मोई मिला, बताओ कौन गाना मांगत रही सुने?
1: फिल्म मेला मैं भौरा तू है फूल।
0: अरे वाह क्या बात है। ओके मैं भौरा तू है फूल। ओके एन फ्रॉम मिला और कोई नवा हाल कोनो कहावत वो धल रहे हैं?
1: ना उसे तो कुछ ना।
0: अच्छा खीफ नहीं, नेक्स्ट वीक। ओके ये थी मिला जी सूत्र मेर के रहने वाली। तो लीजिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है ये इस तरह से आ रहा है।

मुन्ना दे जी और लता की आवाज में पेश हुआ ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक गीत और है और वो गीत हम चलाने वाले हैं सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी, सूत्रमेर के रहने वाले मीला जी और उनके खामिद भैया मंसूर जी के लिए। मीला जी और मंसूर जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद पेश करते हुए, चलिए हम आपकी मांगी हुई गीत हम चलाते हैं। इस तरह से आ रहा फिल्म मेला का नेगेटिव अख्त फिर तक का ये गीत।

निघती नख्तम फिर का ये गीत मैं भंवरा तू है फूल लता जी और मैं थी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए फोन हिंदुस्तानी रेडियो की गीतों गजल के कार्यक्रम में। और गीत को मांगने वाले थे सूत्रमेर के रहने वाले मीला जी और उनके खामिंद मंसूर जी। मीला जी भैया मंसूर जी आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। देखते हैं एक गीत शायद मैं आपको और सुना सकूंगा, उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और वो गीत है ये।

रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी मिलके आपको ये गीत सुनाएं। चलिए जो लोगों ने तार किए हैं उन सबको धन्यवाद तो दे दें। गीत गज़ल के कार्यक्रम जो आज था उन्होंने उसमें भाग लिए हैं उर्शिला जी रोतरदाम के रहने वाली, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेया जी इधरा के रहने वाली, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बेया गजराज जी दना के रहने वाली, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। और भैया चांद्र गुना तो खिसला अल्फनांदरन के रहने वाले हैं, और उन लोगों को भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और आगे चल करके मीला जी और जनाब मंसूर सूत्रमेर के रहने वाले हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। और मैं अपने तरफ से भी आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो कि आपने भाग लिए कार्यक्रम में। तो यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की आप सबको। एक बार फिर जो लोगों ने तार किए हैं और जो लोगों ने कोशिश किए होंगे लेकिन अंदर नहीं आ पाए उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाले दोंदरदाग को, जी हाँ आने वाले दोंदरदाग को, लेकिन आपसे भी कल मिल रहा हूँ कल रात्रि को 7 बजे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रहूँगा, करीबन 1 घंटे या 2 घंटे ये भी हो सकता है। कल रात को 7 बजे मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा, और आप सबको एक शुभ रात्रि। मेरे बात हमारे सहयोगी मिलके आपके सेवा में रहेंगे, और मैं आपसे मिल रहा हूँ जैसे मैंने कहा दोंदरदाग को, लेकिन उससे पहले कल रात्रि को 7 बजे एक बार फिर हम आ रहे हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुदा हाफिज़।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753562 तक सेफ नफेटा फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

यहां से पहला शेर हम आप लोग को और सुनाए हैं और ये है फॉर ऑल द लवर्स, कहते हैं तहजीब में भी उसकी क्या खूब अदा थी, तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क कर। वाह रे दोस्तों, कि तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क करे। तो हम चलते हैं, देखे दिखने में भोले हैं, दिखने में बहुत भोले हैं, लेकिन चाल जो है वो अग्नि के समान है। तो ये बात है कि देखने में भोला है और बॉम्बई का बांबू 96 का मूवी है और क्लासिक सॉन्ग है और बॉम्बई का बाबू की ओर हम चलते हैं।

मैनी भोला है और ये आशा भोसले का ये गाना है बम्बई का बाबू और ये फिल्म का नाम है। तो जितने लोग दूर है तो दूर के मुसाफिर के लोग के लिए हम कुछ गीत और शेर आज हम आप लोग को सुनाए हैं कि कहते हैं फरियाद करके फरियाद कर रही है ये तरसी हुई है निगाहें, फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें। जो लोग दूर रहते हैं तो फरियाद तो बहुत करते हैं, तो कहते हैं फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें और देखी हुई किसी को ज़बाना गुजर गया है, देखी हुई किसी को ज़माना गुजर गया है और जो किसी को देखे हुए ज़माना गुजर गया है तो उसके लिए हम एक स्पेशल सॉन्ग चलाते हैं कि जो अगर दिल के अरमान जो है वो जो टूट जाते हैं तो आंसू बनकर आंखें में झलक जाती है।

और दिल के अरमां आंसू में, और वो रह गए और कहते हैं ये कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम दिल को हम कह कह के ये हम कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम कह कह के दिल को समझा रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं हमारे दोस्तों। इंतजार में लोग बहुत बहुत बहुत बहुत यादें करते रहते हैं हमारे यारों, ये सब बात होता है जब किसी के इंतजार करते हैं, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तन्हा सफर करते रहे, वो तो बीते वक्त उन्हें आने ना था, हम यूं ही सारी रात भर घबराते और बतलाते रहे। और जो कभी कभी लोग कमरे में रहते हैं तो कमरे की जब ताला कर देते और चाबी गुम हो जाते हैं, तो जब चाबी गुम हो जाते हैं तो लोग तुरंत क्या सोचते हैं, हम

0: कभी ऐसा हो तो,
1: सोचो कभी ऐसा हूँ तो भला क्या होगा,
0: कभी ऐसा हो तो क्या हो हम तुम।
1: तो जब चाला चाभी लाश हो जाते तो लोग कांपते लगते हैं।

0: कौन?
1: और हम तुम जब अपने कमरे में बंद होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अभी आप लोग हमें जरूर बताना कि क्या सुन सकते हैं दोस्तों। नॉर्मल्स हम सब एथर पे भी सुनाई देते हैं, यानी अपनी गाड़ी में सुनाई देते हैं, ऑटो में जब बैठे गए नीदरलैंड के बातचीत होते हैं न सूरीनाम या अन्य देशों में, तो यहाँ अपने ऑटो में सुनाई देते 5.7 AM फ्रिक्वेंसी पे आप लोग 24 घंटा हमारा प्रोग्राम को श्रवण कर सकते हैं। और हम सुनते हैं और देहाबी प्रेस रेडियो पर पूरा हॉलैंड देश में सुनाई देते हैं। नहीं आप लोग www.fahun.nl हमारा यानी कि इंटरनेट पे पूरा विश्व में पूरा दुनिया में हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। हमारे यारो तो हम भी चलते हैं और एक शायर की ओर। और शायरी अब क्या है, उल्फत के मारू से ना पूछो अलाम इंतजार का, उल्फत के मारो से ना पूछो अलाम इंतजार का। और 85 है जिंदगी और ख्याल है बहार का, 50 से है जिंदगी और ख्याल है बहार का। हमारे यारो एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक मोहब्बत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है दोस्तों। मुद्दत हो गया है, एक मुद्दत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है। तो हम जा रहे नरगिस राज कपूर के ओर और मूवी के नाम है चोरी। और चोरी चोरी चोरी में क्या होता है, और दादा दादा नहीं परमा श्री मन्ना दी और नैतिक लता जी मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ हम सब सुना जाए।

मधुर आजा सनम मधुर चाननी में हम, और जब तुम मिलेंगे तो बहारों में फूल बरसेगा। और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, आई जिंदगी तेरी भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आहत ना रही। जब किसी के दिल किसी से टूट जाते हैं हमारे यारो, तो ये सब बात निकल आते हैं। तो कोशिश करना कि अपना मोहब्बत जो है, अपनी मोहब्बत के मजबूत पकड़ के रखना, जबरदस्त पकड़ के रखना, और इतना जबरदस्त पकड़ के रखना कि उसमें दरार ना आवे। ये है कि मुझको अब तुझसे अगर जब अपने प्यार को अपने दिल को मजबूत जबरदस्त नहीं पकड़ के रखेंगे, तो ये सब शायरी आपके लिए है कि मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, ऐ जिंदगी तेरी भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आदत ना रही। तो उसको भूल जाना बहुत मुश्किल के बात है। और मैं थी मुकेश, नहीं थी गिल, लता मंगेशकर या जोंग आपको बताएंगी कि किसी को भूल जाना कितनी दुख देता है। इस फिल्म में कुमार यानी कि जीनत अमन मनोज कुमार ने काम किए हैं, और मूवी का नाम है रोटी कपड़ा और मकान की ओर हम चलते हैं।

मैना भी आपको, मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगा। जब आप हमें भूले नहीं देगी तो भला जोनी आपको कैसे भूलेगा। हमारी यारों की यारों की कहते हैं मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, अभी हमने कह दिए थे लेकिन अब कहते हैं कि ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, किसी की जान गई आपकी अदा तेरी। जी दोस्तों कि कब आ रहे है हो, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, हमने चांद रुका है, हमने चांद रोका है एक एक हमने चांद रोका है एक रात के लिए, इसलिए कि पहला पहला प्यार में क्या होता है।

हम दोनों दो प्रेमी और दुनिया छोड़ चले रोमांटिक सॉन्ग है, राजेश खन्ना का फिल्म है, दादा किशोर कुमार जी और नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो। और ये गीत है, फिल्म के नाम है ताज नेगती सेशन फाइव तक के, दादा हेमंत कुमार और दादा हेमंत कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है। आओ सुना जाए।

हर एक काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, man

फन फन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दीवाना हुआ पागल, नॉक स्टेज द लवली सॉन्ग मेंशन। तो हम जानते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारो।

और सर से वो सर की, तो कभी धीरे धीरे के सांझ में हम चलते गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुद गर्ज, मूवी का नाम है खुद गर्ज, सुपर हिट सॉन्ग मैं से मीना से नशा की डरियल कैनेडी से बैल है।

और आप किया जाने से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूं तेरा नाम।

कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तू धरती पे, चाहे जहां भी रहोगे, चाहे श्री नाम में रहोगे या जहां भी रहेगे, तेरे धड़कन से पहचान लूंगा अलका याग्निक कुमार शानू का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग थे। और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

तुम बदल न जाना मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं मूवी के नाम है राजा निघंटिन 105 नेकत का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और जरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है, तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आका यागनी का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जो तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानू राजेंद्र कुमार का ये सॉन्ग है, फिल्म है, और जिसमें मूवी का नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरवानू अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ ही साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नहीं खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी। इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए हैं ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही दार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मोफी के नाम था हीरो नंबर वन फन्नो 1900 एंड सी फन 90। और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये जोंग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये जोंग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम से नागिन का ये सॉन्ग सुपर हिट फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, नीखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

ये शिपरजों थे साथ यार किशोर दादा, क्या सुनाते हैं एक डुएट के ओर हम लोग आज चला जाएं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

और छोटी सी उम्र में रोग तो लग जाते हैं हमारे दोस्तों, और जब रोग लग जाते हैं तो वो कभी नहीं, मूवी का नाम है बैराग छोटी सी उम्र में। और नाइटिंगेल लता जी का ये जोंग थे जिसमें

कुमार और शहरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शहरा मानू बहुत छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बिट जाएगा और 17 बाद में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: करता हूँ आशिक तेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक तेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है। सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंदत एंजसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। और ये जिपर सॉन्ग है दोस्तों, अनहिट फिल्म जो ये गीत नीदरलैंड में बनाए गए हैं।

वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

और मैं पल दो पल का शायर शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है, जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

0: Our to Mr. Asi, और मेरी जिंदगी में शामिल जरूर होना।
1: तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ अपनाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

0: आए जानी चमने और तेरा गोरा गोरा बनन में क्या हलचल मच चुका है।
1: जब सिमट के
0: ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिक्र नाम है वक्त नई खतीन 165 का।

और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर और वो नाइटिंगेल नाइटिंगेल और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत की ओर हम चलते हैं। न्यू निवर रे तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए पदमा श्री मोहम्मद रफी और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरें अरे क्यों खफा हो गई हैं और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो। तो यहां पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, और किशोर दादा आपको क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, चीज ही नमू फिल्म है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश का ये सॉन्ग।